वॾे वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध पाकिस्तान ठाहिण में मुतहद हुई ऐं अॼु पाकिस्तान जी तामीर तरक़ी लाइ पिण सिंध मुतहद आहे। जॾहिं असां खां 7 या 8 भेरा वॾे मुल्क पाकिस्तान ते हमिलो कयो त समूरी क़ौम हिकु थी वई। अॼु असां पंहिंजे फ़ौज जे करे सुकून जी निंड करियूं था। असांजो वजूद पाकिस्तान जे करे आहे। पाकिस्तान जी तरक़ी में असां सभिनी खे पंहिंजो इज्तिमाही किरदारु अदा करणु घुरिजे।

0: सा त असाई समय के केड़ो पैगाम जण चाहिदो
1: सर आऊं त यही चवंदुमि त शुक्र अलहमदिल्ला असां हिन वक़्तु हिकु आज़ाद मुल्क में जेको आहे सो आज़ाद फिज़ा में असां पाकिस्तान प्यारे मुल्क पाकिस्तान में मौजूदु आहियूं। इहे असांजे वॾनि जूं ऐं उन टाइम जा जेके असांजा लीडर्स हुया तिन गॾिजी जेको आहे सो कानूनी ऐं जेको आहे सो पंहिंजी मुल्क जी ख़ातिर जंग विढ़ी ऐं असांखे हिकु आज़ादु मुल्क पाकिस्तान ॾिनो। हिन वक़्तु वरी हाणे इहा असांजी ज़िमेदारी आहे त हुन मुल्क पाक मुल्क जी जेको आहे सो असां कहिड़े नमूने सां ख़िदमत कयूं था ऐं हिफ़ाज़त कयूं था। आज़ादी जी अहमियत वॾी आहे, ख़ासि करे उहे मुल्क जिन जे मथां ॿिया मुल्क क़ाबिज़ आहिनि जीअं कश्मीर आहे, फलस्तीन आहे, शायदि उन्नि खे हिन आज़ादी जी अञा वधीक क़दुरु हूंदो। शुक्र अलहमदिल्ला असां आज़ाद मुल्क में आहियूं ऐं असां इहो ई पैगाम ॾींदासीं त पंहिंजे मुल्क सां प्यार करे माण्हू पंहिंजी धरती सां प्यार करे, छो त आज़ादी जहिड़ी का नेमत ई कोन्हे।
0: बिल्कुलु हक़ीक़त, माण्हू न पंहिंजे मुल्क सां सचो हुजे।
1: बिल्कुलु साईं।
0: साईं अनीस अहमद लाशारी, तव्हां हेडमास्टर आहियो, प्रिंसिपल आहियो पंहिंजो प्राइमरी पंहिंजी स्कूल घड़ी खुदा भुजा, तव्हांजी वॾी महिरबानी सर, लख कुर्ब।
1: वॾी महिरबानी साईं, तव्हां सभिनी खे साइमिन खे मुंहिंजी तरफ़ा आज़ादी जूं जेका सपोर्ट करे वधायूं।
0: वॾी महिरबानी, लख कुर्ब, लख कुर्ब। जीअं समेन असांजो उस्ताद, असांजो हेड मास्तर ऐं पुश्त बाए पुश्त उस्ताद, यानि जेको पाण उस्ताद आहे उनजो वाल साहब बि उस्ताद ऐं असांजो उनजो ॾाॾा साईं बि उस्ताद, त हिन वक़्तु पाण पंहिंजो प्राइमरी स्कूल बख़्श ज़िलो लाड़काणो जा हेड मास्तर बि आहिनि, प्रिंसिपल बि आहिनि, उन जी वॾी महिरबानी असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया। त समेन हिन वक़्तु वरी असां अव्हां खे हिकिड़ो मिली न ॿुधाईंदासीं, गॾिजी पिया ॿुधूं।

जी असमें प्रोग्राम है आज़ादी जा रंग ऐं प्रोग्राम आज़ादी जे रंग में तव्हां असांजे जशन आज़ादी जो मुबारकूं मोकिले सघो था। असांजे नंबर ते असांजो नंबर आहे 0333221322 ते। ऐं जेके असांजा नवां दोस्त प्रोग्राम ॿुधनि पिया या जंहिं बि पंहिंजो रेडियो सेट हाणे हाणे ऑन कयो आहे, असां हुन खे SMS करण जो आसान तरीक़ो ॿुधाईंदासीं। मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदव, तव्हां हुते LRK लिखी स्पेस ॾींदव पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो, ऐं आज़ादी मुबारकूं तव्हां असांखे मोकिलींदव 8881 ते सेंड कंदव। ऐं साईं मुंहिंजा तव्हां असांजे फेसबुक जी ID ते यानी GFM88 जी ID ते बि तव्हां असांजे फेसबुक जे पेज ते बि तव्हां पंहिंजा नाला पंहिंजो आज़ादी जो मुबारकूं लिखी मोकिले सघो था। ऐं असांखे तव्हां कॉल करे बि पंहिंजे आज़ादी हवाले सां मुबारकूं, जशन आज़ादी हवाले सां मुबारकूं ॾेई सघो था। असांजो नंबर आहे 0333221322888।

जी हाँ समय ने प्रोग्राम आज़ादी जा रंग जारी सारी है तवाजो असो साथ रो ठीक यारे वगे कार्यक्रम जो इन वक्त हलूँ पा न्यूज़ ब्रेक तरफ ए कमर्शल ब्रेक की तरफ वरी वापस इंदी।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: brought to you by
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
4: ईरान अमेरिका जंग बंदी में फील्ड मार्शल नायब वजीर आजम नेहरू वजीर अहम किरदार अदा कर दुनिया अमुन इस्तेकाम लाइ पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर रही है। आलमी बरादरी से गुजरी दुनिया के अमुन खुशहाली लाइ भरपूर किरदार अदा कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी जो इस्लामाबाद में

जी हा समय प्रोग्राम आज़ादी जा रंग ऐं ख़ुसूसी प्रोग्राम आहे जशन आज़ादी हवाले सां 14 अगस्त जे हवाले सां त तव्हां असां ॾे मुबारकूं लिखी मोकिले सघो था मोबाइल जे राइट ऑप्शन में ऐं तव्हां असां ॾे राइट ऑप्शन में ईंदव मोबाइल जे में उते ALR खे लिखी स्पेस ॾेई तव्हां पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ नालो सेंड कंदव तव्हां असांजे 888 ते ऐं GFM88 जी जेका ID आहे फेसबुक जो पेज आहे तव्हां हुन ते बि असांजा नाला मोकिले सघो था असांजे स्टूडियो में मोबाइल आन आहे त हुन ते बि पंहिंजा नाला लिखाए सघो था असांजो नंबर आहे 0333-12-13-22-88 त समय 10:30 वरी असां हलंदासीं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु 11 वॻे ताईं कॾहिं बि न वञिजो वापसि ज़रूरु ईंदासीं

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार.
0: यू बाय
1: अगर खूबसूरती.
0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में.

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अजिहा समय न प्रोग्राम आहे आज़ादीअ रंग जो वक़्तु पहुचे पंहिंजी पुॼाणी ते हयाती बख़ैर वरी अवां सां मुलाक़ात ज़रूरु थींदी तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमत अलाए जुड़े करे ॾींदा इजाज़त अलाए निगरबान पाकिस्तान ज़िंदाबाद।

0: हर जज्बे के लिए। हर महफिल के लिए, हर रंग हर रिवायत के लिए हर जश्न के लिए मिलैक फूड आए मनाए आजादी मजे से, क्योंकि मिलैक फूड है सब के लिए।
1: पुरवकार तकरीब थी गुजरी, पाकिस्तान ने विजय क्रिकेट से दादी घाट जा फर्ज संभाले वाया। गवर्नर सिंधिया हाशमी है वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह जी मजार कायद ते हाजरी गुलन जी चादर चाड़ी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी क्यादत में पाकिस्तान भारत के जिल्लत वारी शिकस्त दिनी। ईरान अमेरिका जंगबंदी में फील्ड मार्शल नायब वजीर आजम ए घरू वजीर अहम किरदार अदा कर सदर आसिफ अली ज़रदारी जो इस्लामाबाद में यादगार फतेह जी इफ्तिताही तकरीब के खिताब कंदे यादगार फतेह मुहरका है हक में कामयाबी शहीद ने गाजन जो लाज सवाल दास्तान है एग्जाम नसल कशी कें भी सूरत में कबूल ना है। ग्रेटर इसराइल जो ख्वाब कदें भी पूरो न थींदो। वजीर आजम के हक वाली जंग में अजीम कामयाबी ते कौम के मुबारकों। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के भेटा पेश। शहबाज शरीफ चो तो फील्ड मार्शल की क्यादत में हथियारबंद फौज दुश्मन के तारीखी शिकत दिनी। फिजाई ए सामूरी फौज के सरबराहन की क्यादत में फौज जो किरदार सारा जगो है। मुहरका हक की कामयाबी पाकिस्तान की इज्जत में गैर मामूली वाद कई जैं जो मिसाल न तो मिले। पाकिस्तान के पानी जो एक टुफड़ो असाजी रेड लाइन है। भारत सीधी वाट ते ना आयो तो केर जवाब दिनो वो। पाकिस्तान खिते ए दुनिया के तकरार पाक दिसन चाहे तो तकरार गडियल कौमन के ठहराव मुताबिक हल थे घुर्जन। अमन चाहूं पर अमन की ख्वाहिश के कमजोरी न समझो वे।

0: ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਰਜੀਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਪਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
1: आप सुन रहे थे GAFM, आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
4: जो शहर जो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
5: GFM 90.8।

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना जान रैम्बो। जश्न आज़ादी के मौके पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही ये कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबा और जश्न आज़ादी के मौके पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूं और साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि हम सब मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान,
3: दिल जान पाकिस्तान।
4: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम,
3: दिल जान पाकिस्तान।
5: हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हमें सेलिब्रेट करते हैं, झंडियाँ वगैरह लगाते हैं, अपने बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं झंडे वगैरह लेकर, और जो चीज़ें सजी हुई होती हैं पूरे शहर में उसको दिखाते हैं उनको, तमाम मतलब जश्न आज़ादी के बारे में और 14 अगस्त के बारे में उनको तफसीलन बताया जाता है, क्या क्यों मना रहे हैं, हम किस लिए मना रहे हैं, सब चीज़ें उनको बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से बच्चों को।
6: 14 अगस्त हम बहुत खुशी से मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, झंडे लगाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं।
7: दिल जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।
3: दिल जान पाकिस्तान।
4: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम,
3: दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
4: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम,
3: दिल जान पाकिस्तान।
8: दिल और जान से बनाते हैं क्योंकि हमारा आज़ादी का दिन है, इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है, कोई दिन नहीं है। ये एहसास दिलाता है दिन के हमें इससे, पाकिस्तान से, वरना कुछ भी नहीं।
9: हम लोग यानी यूनिवर्सिटीज में फंक्शन वगैरह होते हैं वो अटेंड करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और लाइक घर में सजाना उठना, कपड़े अच्छे पहनना, ये सब कुछ होता रहता है पूरे दिन।
5: बेहतरीन किस्म का दिन है, हमें अपनी मुकम्मल तौर पर आज़ादी है कि हम हर जगह जा सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, सब काम अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं।
10: ऐसी आज़ादी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, हम भी नहीं होते।

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: तमाम सुनने वालों को अशरफ खान का सलाम पहुंचे। पाकिस्तान हमारी जान, हमारी पहचान। पाकिस्तान है तो हम हैं। ये ना देखे कि पाकिस्तान ने आपको क्या दिया, ये सोचिए कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। हर बंदे को हिस्सा डालना चाहिए पाकिस्तान की तारीख और तरक्की में। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान।

0: मोतीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयारु कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान। दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया सऊद और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जो वतन में रहते हैं, जो वतन से बाहर अपने मुल्क से दूर रहते हैं, उन सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हमें भी चाहिए कि अब हम बढ़ती उम्र के साथ साथ जरा अपने मुल्क से, अपने लोगों से जो है सिंसियर हों और अपने मुल्क के लिए वो सब कुछ करें जो कि आज तक हमने नहीं किया। कदम बढ़ाएंगे तो अपने मुल्क के लिए और अच्छा कर सकेंगे। इससे बेहतरीन तोहफा हमारे मुल्क के लिए कोई नहीं हो सकता। और एक बार फिर मैं बहुत मुबारकबाद दूंगी उन तमाम लोगों को जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं है, जिनकी वजह से हमें ये प्यारा मुल्क हमारा वतन मिला है। हमारे प्यारे कायद आजम और उनके साथ जितने भी साथी थे उन सबको भी बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान। दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना जान रैम्बो। जश्न आजादी के मौके पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही ये कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान।

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबा और जश्न आज़ादी के मौके पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूं और साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि हम सब मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान।

0: हिन मिट्टी जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ी असां जे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते

0: जान पाकिस्तान,
1: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम
0: दिल जान पाकिस्तान।
2: हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हमें सेलिब्रेट करते हैं, झंडियाँ वगैरह लगाते हैं, अपने बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं झंडे वगैरह लेकर, और जो चीज़ें सजी हुई होती हैं पूरे शहर में उसको दिखाते हैं उनको, तमाम मतलब जश्न आज़ादी के बारे में और 14 अगस्त के बारे में उनको तफसीलन बताया जाता है, क्या क्यों मना रहे हैं, हम किस लिए मना रहे हैं, सब चीज़ें उनको बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से बच्चों को।
3: 14 अगस्त हम बहुत खुशी से मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, झंडे लगाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं।
4: दिल जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान,
1: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम
0: दिल जान पाकिस्तान।

0: दिल जान पाकिस्तान,
1: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम
0: दिल जान पाकिस्तान।
2: दिल और जान से बनाते हैं क्योंकि हमारा आजादी का दिन है, इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है, कोई दिन नहीं है। ये एहसास दिलाता है दिन के हमें इससे पाकिस्तान से, वरना कुछ भी नहीं है।
3: हम लोग यानी यूनिवर्सिटीज में फंक्शन वगैरह होते हैं वो अटेंड करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और लाइक घर में सजाना उतना, कपड़े अच्छे पहनना, ये सब कुछ होता रहता है पूरे दिन।
4: तीन किस्म का दिन है, जगह जा सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, सब काम अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं।
5: ऐसी बात है, आज़ादी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते। इसका ख्याल करें आप, अल्लाह पाक ने हमें एक तोहफा दिया है।
6: हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की है और जदोजहद करके कुर्बानियाँ देकर ये वतन हासिल किया है, तो हमें चाहिए कि इस मुल्क का ख्याल रखिए।
7: दिल जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, दिल जान।

0: मुझे धरती की कसम, मुझे मट्टी की कसम, मुझे इस दिल की कसम, मुझे इस जान की कसम,
1: मुझे धरती की कसम, मुझे मट्टी की कसम, मुझे इस दिल की कसम, मुझे इस जान की कसम।
0: ना मिले प्यार चाहे मैं फिर उखार चाहे।

0: जान पाकिस्तान
1: जश्ने आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम
0: दिल जान पाकिस्तान
2: दिल और जान से बनाते हैं क्योंकि हमारा आजादी का दिन है, इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है, कोई दिन नहीं है। ये एहसास दिलाता है दिन के हमें इससे पाकिस्तान से वरना कुछ भी नहीं।
3: हम लोग यानी यूनिवर्सिटीज में फंक्शन वगैरह होते हैं वो अटेंड करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और लाइक घर में सजाना उठना कपड़े अच्छे पहनना ये सब कुछ होता रहता है पूरे दिन।
4: तीन किस्म का दिन है, जगह जा सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, सब काम अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं।
5: ऐसी बात है, आज़ादी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते। इसका ख्याल करें आप, अल्लाह पाक ने हमें तोहफा दिया है,
6: हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की है और जदोजहद करके कुर्बानियाँ देकर ये वतन हासिल किया है, तो हमें चाहिए कि इस मुल्क का ख्याल रखिए।
7: दिल जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।

0: जान पाकिस्तान
1: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम
0: दिल जान पाकिस्तान
2: दिल और जान से बनाते हैं क्योंकि हमारा आजादी का दिन है। इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है, कोई दिन नहीं है। ये एहसास दिलाता है दिन के हमें इससे पाकिस्तान से वरना कुछ भी नहीं है।
3: हम लोग यानी यूनिवर्सिटीज में फंक्शन वगैरह होते हैं वो अटेंड करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और लाइक घर में सजाना अपना, कपड़े अच्छे पहनना, ये सब कुछ होता रहता है पूरे दिन।
4: तीन किस्म का दिन है, जगह जा सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, सब काम अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं।
5: ऐसी बात है, आज़ादी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते। इसका ख्याल करें आप, अल्लाह पाक ने हमें तोहफा दिया है।
6: हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की है और जदोजहद करके कुर्बानियाँ देकर ये वतन हासिल किया है, तो हमें चाहिए कि इस मुल्क का ख्याल रखिए।
7: दिल जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, दिल जान।

0: हर तान पाकिस्तान
1: अबसार अहमद के साथ।
2: 1971 के बाद मशरिकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान गिटारिस्ट पाकिस्तान की मोहब्बत में अपने अहलो आयाल को छोड़कर पाकिस्तान चला आया। उसने पाकिस्तान के मर्दम खेज शहर कराची का रुख किया और यहाँ पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज पर गिटार से ताने उड़ाने लगा। लेकिन उसकी आवाज में भी एक स्पार्क था, इसीलिए वो टीवी स्टेशन में कभी कभी गाने की मशक भी किया करता था। एक दिन प्रोग्राम संडे के संडे में कोई गुलूकार नहीं आया तो टीवी फनकार मोहम्मद इब्राहिम साहिब के कहने पर उस नौजवान गुलूकार को मौका दिया गया, जिसने अपनी आवाज के जरिए आवाम के दिल जीत लिए और फिर उसने जल्द पाकिस्तान की तान यानी कौमी नगमा भी गाकर खुद को कौमी गुलूकारों की फहरिस्त में शामिल करवा लिया। ये आवाज थी हमारे लेजेंड गुलूकार आलमगीर साहिब की। आलमगीर ने अपना पहला कौमी नगमा 1975 को गाया, जिसे असद मोहम्मद खान साहिब ने तहरीर किया था। फिर आलमगीर की जोशीली आवाज में कौमी नगमात बनना शुरू हुए। आइए समाप्त करते हैं अपने इस अजीम फनकार की आवाज में पाकिस्तान की तान, जिसे अल्फाज का जामा पहनाया था मरहूम जमीलुद्दीन आली ने। ये नगमा दरअसल सुबाइयत और लिसानियत के मारों के मुंह पर एक थप्पड़ था, जो कहते थे कि सानिया मशरिकी पाकिस्तान के बाद नजरिया पाकिस्तान खत्म हो गया है। लेकिन आली जी से रहा नहीं गया और उन्होंने फौरन पाकिस्तान को अल्लाह की देन बताकर अवाम को मुतवज्जो किया और कहा कि पाकिस्तान को समझो लोगो, पाकिस्तान खुदा का है। ये नगमा पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज पर निसार बज़मी साहिब की मौसिकी में तैयार हुआ। इससे कबल यही नगमा सुभान राठर और मोहम्मद इब्राहिम साहिब ने

0: वतन के लिए
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के अशार,
0: मेरे वतन में उजाले हों हर तरफ अब्बास, अलम बुलंद रहे इसकी आन बान रहे, मेरा वजूद मेरी जिंदगी रहे न रहे, वतन का नाम रहे इसकी ऊंची शान रहे।
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के अशार,
0: वतन के लिए

0: वतन के लिए
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के अशार,
0: ये अर्ज़े को हो बयाबान दयारे संगो समर, ये अर्ज़े को हो बयाबान दयारे संगो समर। मेरे वजूद का उनवान नहीं तो कुछ भी नहीं, जमीन का प्यार नहीं सिर्फ खेल लफ्जों का, मैं इसकी खाक पे कुर्बान नहीं तो कुछ भी नहीं।
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के अशार,
0: वतन के लिए

0: वतन के लिए
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के आशार,
0: जलजलों को न दस्तरस हो कभी, ऐ वतन तेरी इस्तकामत तक हम पे गुजरी कयामतें, लेकिन तू सलामत रहे कयामत तक।
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के आशार,
0: वतन के लिए

0: वतन के लिए
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के अशार,
0: मेरे वतन में उजाले हों हर तरफ अब्बास, अलम बुलंद रहे इसकी आन बान रहे, मेरा वजूद मेरी जिंदगी रहे न रहे, वतन का नाम रहे इसकी ऊंची शान रहे।
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के अशार,
0: वतन के लिए, वतन के लिए
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के अशार।
0: खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे जवाल न हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल न हो।
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के अशार,
0: वतन के लिए,

0: वतन के लिए
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के आशार,
0: इन पाक फिजाओं में गूंजेगी मेरी धड़कन, चमकेगी मेरी चौखट, महकेगा मेरा आंगन। मैं अपने बुजुर्गों के ख्वाबों की निशानी हूँ, मैं अपने बुजुर्गों के ख्वाबों की निशानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ।
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के आशार,
0: वतन के लिए।

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाखर। दोस्तों आप सबको मेरी तरफ से यौम आज़ादी मुबारक हो। तो इस यौम आज़ादी पे मेरा एक छोटा सा पैगाम सिर्फ ये है कि मिलजुल के रहें, सिर्फ एक पाकिस्तानी बन के रहें, सिर्फ एक पाकिस्तानी होके सोचें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान।

मुल्की सियासी क़यादत जो आज़ादी जे 79 ॾिण ते क़ौम खे वाधायूं। क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिना समेत समूरनि बानियुनि खे भेट आपे। सदर आसिफ ज़रदारी चयो त 14 अगस्त आज़ादी लाइ ॾिनल क़ुर्बानी खे यादि करण जो ॾींहुं आहे। सभिनी खे गॾिजी मुल्की दिफ़ा लाइ कमु करणो पवंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त क़ाइद आज़म जे ॾिनल नज़रिये तहत मुल्क खे ख़ुशहाल ऐं तरक़ी याफ़्ता बणायो वेंदो। गरु वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त आज़ाद बुज़ुर्गनि ऐं अज़ीम जिदोजहद जो समर आहे। हथियारबंद फ़ौजनि पारां 79 आज़ादी जे ॾिण ते क़ौम खे वाधायूं। फील्ड मार्शल नेवल ऐं एयर चीफ पारां क़ौम खे मुबारक ॾिनी वई आहे। SPR चयो आहे त समूरनि ख़तरनि खे मुंहुं ॾियण ऐं वतन जी दिफ़ा वारो अज़म बरक़रार आहे। क़ौम सां गॾिजी हथियारबंद फ़ौज अमुन ऐं इस्तक़ाम लाइ साबित क़दम रहंदी। सिंध मुतहद हुई आहे ऐं रहंदी। सूबनि वारो बहस नओं नाहे। सूबे जूं ॻाल्हियूं कंदड़ परॾेह भॼी वेंदा आहिनि या पाण में विढ़ी पवंदा आहिनि। मज़ार काए ते हाज़िरीअ बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध असेंबली सिंध जे सरहदनि बाबति केतिरा ई भेरा ठहराउ मंज़ूर करे चुकी आहे। सूबनि जूं ॻाल्हियूं कंदड़ भले पंहिंजो शौक़ु पूरो करे ॾिसनि। सूबनि जे क़याम वारो तरीक़ो आइन में मौजूदु आहे। सिस्टम बि नाकाम नाहे थियो। ख़ामियूं थी सघनि थियूं। सिंध समेत समूरे जश्न आज़ादी जे मौके ते रैलियूं तकरीबूं रैलियूं ऐं मेड़ाका कराची हैदराबाद सखर लाड़काणे ऐं मीरपुर खास में जश्न आज़ादी जूं रैलियूं। बदीन खैरपुर नवाबशाह सांगर ठठो टंडो मोहम्मद खान ऐं ॿियनि शहरनि में तकरीबूं। कंदकोट टंडो जाम तलार नबीसर रोड टंडो आदम फेसगंज वगुण ऐं ॿियनि शहरनि में रैलियूं। दादू मिठी खैबर खिपरो समारोह ऐं ॿियनि शहरनि में बि जश्न आज़ादी जूं तकरीबूं होटायूं वयूं। तकरीबनि दौरान झंडा फड़काए केक काटिया विया। शागिर्दनि पारां टेबलोज़ पेश कया विया।

अमेरिका तरफ़ां पाकिस्तानी कौम के आज़ादी जे ॾिण ते मुबारकूं पेश कयां थो। अमेरिकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त अमेरिका ऐं पाकिस्तान गॾियल सहकार सां सलाहियतनि खे तरक़ी में तब्दील करे रहिया आहिनि। अॼोके ॾींहं ते पाकिस्तान सां भाईवारी मज़बूत दोस्ती वारो अज़म जो बि बचाव कयूं था।

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरिया परवेज और आप सब लोगों को मेरी तरफ से आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त के दिन हम सब लोगों को ये अहद करना चाहिए कि मिलजुल के कोशिश करें कि हम वक्त गुजारें और पाकिस्तान के लिए दुआएं करें, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है और जो भी मिलना है वो मिलना भी पाकिस्तान से ही है। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बेहद आज़ादी मुबारक।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: दिल जान पाकिस्तान हमारा देश हमारा मान दिल जान पाकिस्तान दिल जान पाकिस्तान।
4: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सना और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक हो। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारी जो यूथ है, जो 65% है ऑफ द पॉपुलेशन, हमें ये सोचना चाहिए कि यूथ को हमने किस तरह से अपना एसेट बनाना है। सोच के बाद हमें एक हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है और फिर उसमें अमल पैरा होना भी बहुत ज़रूरी है।
3: दिल जान पाकिस्तान हमारा देश हमारा मान दिल जान पाकिस्तान।

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील हाशमी और इस 14 अगस्त को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं अपने तमाम नौजवान भाइयों को भी, जो छोटे हैं उनको भी, जो बड़े हैं उनको भी, कि जहां तक हो सके इस मुल्क में अपने प्यारों में, अपने दोस्तों में, अपने मोहल्ले में मोहब्बत और अमन की बात को फैलाएं।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान।

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: वेलकम, मेरा नाम है अहमद जान साहब और 14 अगस्त के हवाले से सबसे पहले सबको बहुत बहुत मुबारक हो और बस दुआ करता हूँ जिस मुल्क ने मुझे तो सर छुपाने के लिए एक जगह, एक पहचान, एक नाम दिया है। दुनिया भर में जहाँ भी जाता हूँ इस मुल्क की वजह से पहचाना जाता हूँ और इस मुल्क, इस पाक धरती से इतनी मोहब्बत है जिसका अंदाजा नहीं। तो बस मैं यही पैगाम दूंगा कि इस 14 अगस्त को भी हर 14 अगस्त की तरह खूबसूरत, हरा भरा और हसीन बनाए। हर साल 14 अगस्त और जोशो खरोश से बनाया जाता है, इस साल भी वो जोशो खरोश नजर आ रहा है। तो बस मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा 14 अगस्त के हवाले से। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान।

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: तमाम सुनने वालों को अशरफ खान का सलाम पहुंचे। पाकिस्तान हमारी जान, हमारी पहचान। पाकिस्तान है तो हम हैं। ये ना देखे कि पाकिस्तान ने आपको क्या दिया, ये सोचिए कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। हर बंदे को हिस्सा डालना चाहिए पाकिस्तान की तारीख और तरक्की में। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान।

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया सऊद और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जो वतन में रहते हैं, जो वतन से बाहर अपने मुल्क से दूर रहते हैं, उन सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हमें भी चाहिए कि अब हम बढ़ती उम्र के साथ साथ जरा अपने मुल्क से, अपने लोगों से जो है सिंसियर हों और अपने मुल्क के लिए वो सब कुछ करें जो कि आज तक हमने नहीं किया। कदम बढ़ाएंगे तो अपने मुल्क के लिए और अच्छा कर सकेंगे। इससे बेहतरीन तोहफा हमारे मुल्क के लिए कोई नहीं हो सकता। और एक बार फिर मैं बहुत मुबारकबाद दूंगी उन तमाम लोगों को जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं है, जिनकी वजह से हमें ये प्यारा मुल्क, हमारा वतन मिला है। हमारे प्यारे कायद आजम और उनके साथ जितने भी साथी थे उन सबको भी बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान।

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबा और जश्न आज़ादी के मौके पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूं और साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि हम सब मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान।

0: जान पाकिस्तान
1: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम
0: दिल जान पाकिस्तान।
2: हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हमें सेलिब्रेट करते हैं, झंडियाँ वगैरह लगाते हैं, अपने बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं झंडे वगैरह लेकर, और जो चीज़ें सजी हुई होती हैं पूरे शहर में उसको दिखाते हैं उनको, तमाम मतलब जश्न आज़ादी के बारे में और 14 अगस्त के बारे में उनको तफसीलन बताया जाता है, क्या क्यों मना रहे हैं, हम किस लिए मना रहे हैं, सब चीज़ें उनको बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से बच्चों को।
3: 14 अगस्त हम बहुत खुशी से मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, झंडे लगाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं।
4: दिल जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान
1: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम
0: दिल जान पाकिस्तान।

0: हिंदुस्तान पाकिस्तान
1: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम
0: दिल जान पाकिस्तान
2: दिल और जान से बनाते हैं क्योंकि हमारा आजादी का दिन है। इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है, कोई दिन नहीं है। ये एहसास दिलाता है दिन के हमें इससे पाकिस्तान से वरना कुछ भी नहीं।
3: हम लोग यानी यूनिवर्सिटीज में फंक्शन वगैरह होते हैं वो अटेंड करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और लाइक घर में सजाना उतना कपड़े अच्छे पहनना ये सब कुछ होता रहता है पूरे दिन।
4: तीन किस्म का दिन है, जगह जा सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, सब काम अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं।
5: ऐसी बात है, आज़ादी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते। इसका ख्याल करें आप, अल्लाह पाक ने हमें एक तोहफा दिया है।
6: हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की है और जदोजहद करके कुर्बानियाँ देकर ये वतन हासिल किया है, तो हमें चाहिए कि इस मुल्क का ख्याल रखिए।
7: दिल जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, दिल जान।

0: जान पाकिस्तान,
1: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम
0: दिल जान पाकिस्तान।
2: दिल और जान से बनाते हैं क्योंकि हमारा आजादी का दिन है, इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है, कोई दिन नहीं है। ये एहसास दिलाता है दिन के हमें इससे पाकिस्तान से, वरना कुछ भी नहीं।
3: हम लोग यानी यूनिवर्सिटीज में फंक्शन वगैरह होते हैं, वो अटेंड करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और लाइक घर में सजाना, अपना कपड़े अच्छे पहनना, ये सब कुछ होता रहता है पूरे दिन।
4: तीन किस्म का दिन है, जगह जा सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, सब काम अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं।
5: ऐसी बात है, आजादी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते। इसका ख्याल करें आप, अल्लाह पाक ने हमें तोहफा दिया है।
6: हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की है और जदोजहद करके कुर्बानियां देकर ये वतन हासिल किया है, तो हमें चाहिए कि इस मुल्क का ख्याल रखिए।
7: दिल जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, दिल जान।

0: जान पाकिस्तान
1: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम
0: दिल जान पाकिस्तान।
2: दिल और जान से बनाते हैं क्योंकि हमारा आजादी का दिन है, इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है, कोई दिन नहीं है। ये एहसास दिलाता है दिन के हमें इससे पाकिस्तान से, वरना कुछ भी नहीं।
3: हम लोग यानी यूनिवर्सिटीज में फंक्शन वगैरह होते हैं वो अटेंड करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और लाइक घर में सजाना उतना, कपड़े अच्छे पहनना, ये सब कुछ होता रहता है पूरे दिन।
4: तीन किस्म का दिन है, जगह जा सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, सब काम अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं।
5: ऐसी बात है, आज़ादी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते। इसका ख्याल करें आप, अल्लाह पाक ने हमें एक तोहफा दिया है।
6: हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की है और जदोजहद करके कुर्बानियाँ देकर ये वतन हासिल किया है, तो हमें चाहिए कि इस मुल्क का ख्याल रखिए।
7: दिल जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, दिल जान।
8: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
9: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: जान पाकिस्तान
1: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम
0: दिल जान पाकिस्तान।
2: दिल और जान से बनाते हैं क्योंकि हमारा आजादी का दिन है, इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है, कोई दिन नहीं है। ये एहसास दिलाता है दिन के हमें इससे पाकिस्तान से, वरना कुछ भी नहीं।
3: हम लोग यानी यूनिवर्सिटीज में फंक्शन वगैरह होते हैं वो अटेंड करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और लाइक घर में सजाना उतना, कपड़े अच्छे पहनना, ये सब कुछ होता रहता है पूरे दिन।
4: तीन किस्म का दिन है, हमें अपनी मुकम्मल तौर पर आजादी है कि हम हर जगह जा सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, सब काम अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं।
5: ऐसी बात है, आजादी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते। इसका ख्याल करें आप, अल्लाह पाक ने हमें एक तोहफा दिया है।
6: हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की है और जदोजहद करके कुर्बानियाँ देकर ये वतन हासिल किया है, तो हमें चाहिए कि इस मुल्क का ख्याल रखिए।
7: दिल जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान।

0: हर तान पाकिस्तान
1: अबसार अहमद के साथ।
2: 1971 के बाद मशरिकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान गिटारिस्ट पाकिस्तान की मोहब्बत में अपने अहलो आयाल को छोड़कर पाकिस्तान चला आया। उसने पाकिस्तान के मर्दम खेज शहर कराची का रुख किया और यहाँ पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज पर गिटार से ताने उड़ाने लगा। लेकिन उसकी आवाज में भी एक स्पार्क था, इसीलिए वो टीवी स्टेशन में कभी कभी गाने की मशक भी किया करता था। एक दिन प्रोग्राम संडे के संडे में कोई गुलूकार नहीं आया तो टीवी फनकार मोहम्मद इब्राहिम साहिब के कहने पर उस नौजवान गुलूकार को मौका दिया गया, जिसने अपनी आवाज के जरिए अवाम के दिल जीत लिए और फिर उसने जल्द पाकिस्तान की तान यानी कौमी नगमा भी गाकर खुद को कौमी गुलूकारों की फहरिस्त में शामिल करवा लिया। ये आवाज थी हमारे लेजेंड गुलूकार आलमगीर साहिब की। आलमगीर ने अपना पहला कौमी नगमा 1975 को गाया, जिसे असद मोहम्मद खान साहिब ने तहरीर किया था। फिर आलमगीर की जोशीली आवाज में कौमी नगमात बनना शुरू हुए। आइए समाप्त करते हैं अपने इस अजीम फनकार की आवाज में पाकिस्तान की तान, जिसे अल्फाज का जामा पहनाया था मरहूम जमीलुद्दीन आली ने। ये नगमा दरअसल सुबाइयत और लसानियत के मारों के मुंह पर एक थप्पड़ था, जो कहते थे कि सानिया मशरिकी पाकिस्तान के बाद नजरिया पाकिस्तान खत्म हो गया है। लेकिन आली जी से रहा नहीं गया और उन्होंने फौरन पाकिस्तान को अल्लाह की देन बताकर अवाम को मुतवज्जो किया और कहा कि पाकिस्तान को समझो लोगो, पाकिस्तान खुदा का है। ये नगमा पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज पर निसार बज़मी साहिब की मौसीकी में तैयार हुआ। इससे कबल यही नगमा सुभान राठर और मोहम्मद इब्राहिम साहिब ने रेडियो पाकिस्तान कराची के लिए भी गाया था और फिर खालिद वहीद ने भी इस नगमे को बज़मी साहिब की मौसीकी में गाया। लेकिन आलमगीर की आवाज में ये पाकिस्तान की तान आज भी गूंजती है तो हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान का चेहरा दिल से देखने पर मजबूर करती है कि इस पर आंख जो उठी है खुद बरसों तक रोई है। इसका तसव्वुर, इसका खमीर ईमान और वफा का है। पाकिस्तान को समझो लोगो, पाकिस्तान खुदा का है।

0: वतन के लिए
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के अशार,
0: मेरे वतन में उजाले हों हर तरफ अब्बास, अलम बुलंद रहे इसकी आन बान रहे, मेरा वजूद मेरी जिंदगी रहे न रहे, वतन का नाम रहे इसकी ऊंची शान रहे।
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के अशार,
0: वतन के लिए

0: वतन के लिए
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के आशार,
0: ये अर्ज़े को हो बयाबान दयारे संगो समर, ये अर्ज़े को हो बयाबान दयारे संगो समर। मेरे वजूद का उनवान नहीं तो कुछ भी नहीं, जमीन का प्यार नहीं सिर्फ खेल लफ्जों का, मैं इसकी खाक पे कुर्बान नहीं तो कुछ भी नहीं।
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के आशार,
0: वतन के लिए

0: वतन के लिए
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के आशार।
0: खुदा करे मेरी अर्ज पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशे जवाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल न हो।
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के आशार।
0: वतन के लिए

0: वतन के लिए
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के अशार,
0: जलजलों को न दस्तरस हो कभी, ऐ वतन तेरी इस्तकामत तक हम पे गुजरी कयामतें, लेकिन तू सलामत रहे कयामत तक।
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के अशार,
0: वतन के लिए

0: वतन के लिए
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के अशार,
0: इन पाक फिजाओं में गूंजेगी मेरी धड़कन, चमकेगी मेरी चौखट, महकेगा मेरा आंगन। मैं अपने बुजुर्गों के ख्वाबों की निशानी हूँ, मैं अपने बुजुर्गों के ख्वाबों की निशानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ।
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के अशार,
0: वतन के लिए

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाखिर। दोस्तों आप सबको मेरी तरफ से यौम आज़ादी मुबारक हो। तो इस यौम आज़ादी पे मेरा एक छोटा सा पैगाम सिर्फ ये है कि मिलजुल के रहें, सिर्फ एक पाकिस्तानी बन के रहें, सिर्फ एक पाकिस्तानी होके सोचें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान।

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरिया परवेज और आप सब लोगों को मेरी तरफ से आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त के दिन हम सब लोगों को ये अहद करना चाहिए कि मिलजुल के कोशिश करें कि हम वक्त गुजारें और पाकिस्तान के लिए दुआएं करें, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है और जो भी मिलना है वो मिलना भी पाकिस्तान से ही है। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बेहद आज़ादी मुबारक।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान।

करती हैं। रब करीम पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी तमाम तर चैलेंजेस से निकाल कर हकीकी आज़ादी खुशहाली अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।

आयडियल एंड नंबर आहे 031111111185। जी नंबर एक दफ़ो ॿीहर नोट करियो 031111185। ॿुड़ी 313 टेटीह 111 86। ओके।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

जी जनाब वेलकम वलीकार खुश आमदीद ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जो GAFM मातली GAFM सकरंड GAFM मटियारी ऐं GAFM मेहरापुर जो गडियल आवाज वतन अज़ीज़ जो जोश ऐं आज़ादी जो जोश ऐं असां सभई आज़ादी खे वरी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाए रहिया आहियूं। अवां जेकॾहिं असां साण पंहिंजे मोहबतुनि जो इज़हार करणु चाहियो था, ॻाल्हाइणु चाहियो था, त असांजो नंबर आसान आहे, नंबर नोट करे वठो 031-333-1185 सो उन ते कयो काल ऐं कजो हाल ऐं अहिवाल। अॼु आहे जश्न आज़ादी जो जोश ऐं पूरे पाकिस्तान में इंतिही ख़ूबसूरत तरीक़े सां, इंतिही शानदार तरीक़े सां, शान ऐं मान सां असां पंहिंजे प्यारे वतन पाकिस्तान जे आज़ादी जो ॾींहुं मल्हायूं पिया। ऐं शुक्र अलहमदुल्ला असां उहे ख़ुश नसीब क़ौम आहियूं जिन खे आज़ाद मुमलकत नसीब थी। वतन अज़ीज़ जी आज़ादी यकीन असां पाकिस्तान वासियुनि जी नसीब जे हवाले सां वॾी ख़ुश नसीबी आहे जो अॼु असां पंहिंजे प्यारे वतन जी 79 सालगिरह मल्हायूं पिया, यानी असांजी आज़ादीअ खे तकरीबन जेको आहे 79 साल थी चुका आहिनि ऐं असां 79 साल आज़ाद क़ौम तौर गुज़ारिया आहिनि, असांजी वॾी ख़ुश नसीब। त पोइ मज़े सामाइन अवां सां वॾियूं ॻाल्हियूं बि जारी रहंदियूं ऐं अवां असांखे बिल्कुलु कॉल करे असां सां शामिल थी सघो था। असांजो ॿियो जेको नंबर आहे उहो नोट करे वठो जंहिं ते तव्हां कॉल कंदा 0-331-252-5786 ॿ नंबर तव्हांजे लाइ बिल्कुलु खुलियल रहंदा जिन ते तव्हां असांखे कॉल करे सघो था 0-331-252-5786 ते बि तव्हां कॉल करियो ताकि असीं अवां सां अॼु दिलि जी ॻाल्हि करे सघूं। अॼु सॼे पाकिस्तान में हर शहर में बिल्कुलु ख़ूबसूरत मंज़र आहिनि आज़ादी जा, ऐं जेकॾहिं तव्हां शहरनि में वेंदव त शहरनि जा जेके बि काफ़ी अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि जिन खे सींगारियो वियो आहे, सरकारी इमारतुनि ते जेके आहिनि उहे रंगीन बल्ब लॻाया विया आहिनि, रंगीन झंडियूं लॻायल आहिनि, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा जेके शोपीस नसब कया विया आहिनि लॻाया विया आहिनि, जंहिंजे करे अॼु पूरो पाकिस्तान झरकी रहियो आहे ऐं मुरकी रहियो आहे। प्यारा ॿार जेके आहिनि उन्हनि खे बेज लॻल आहिनि ऐं इताई सुहिणी ड्रेसिंग करे अॼु प्यारनि ॿारनि मुख़्तलिफ़ स्कूलनि में पार्टिसिपेट कयो। जेके स्कूल तयारी जिन कई, काफ़ी ॿार हुआ जिन स्पीचिस में तयारी कई, किन मिली नगमनि जी तयारी कई, किन ॿारनि मुख़्तलिफ़ जेके शोज़ हुया, पीटी शो, मार्च पास्ट, जिमनेस्टिक शोज़, मुख़्तलिफ़ स्कूलनि जी तयारी हूंदी आहे। ऐं अवां ॼाणो था त काफ़ी अहिड़ा बि स्कूल आहिनि जेके स्कूल तमामु ज़बरदस्त क़िस्म जी जेका मार्च पास्ट कंदा आहिनि, पीटी शो कंदा आहिनि ऐं उन सां गॾो गॾु हू जिमनेस्टिक शोज बि कंदा आहिनि। सो केतिरा ई स्कूल आहिनि जिन जी इहा पेशकश रही ऐं अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हर ज़िले हेडक्वार्टर, तालुके हेडक्वार्टर में तमामु इलाइक़ा जेके आहिनि उते अॼु क़ौमी झंडे खे फड़कायो वियो ऐं पुलिस जे चाक चौबंद दस्तनि अॼु वतन अज़ीज़ जे झंडे खे सलामी ॾिनी ऐं उन सॼे सारे ख़ूबसूरत मंज़रनि खे अञा तव्हां सां कंदासीं शेयर। पर फ़िलहालु वठूं था हिकिड़ो ब्रेक ऐं मिलंदासीं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ, केॾे न वञिजो।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर
3: मिट्टी जो मान बधाई।

ॾींहं जो ॾींहुं क़ौमी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। इस्लामाबाद में 31 तोपन ऐं सूबाई राजधानी में 21 तोपन जी सलामीअ सां ॾींहं जी शुरूआति थी। मुल्की सलामती ऐं ख़ुशहालीअ लाइ ख़ुशी दुआऊं बि घुरियूं वयूं। सरकारी ऐं निजी इमारतनि ते क़ौमी परचम बि फड़काया विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जशन जूं तक़रीबूं, आज़ादी जी ख़ुशीअ में केक बि काटिया विया। नौजवाननि, नारियुनि, ॿुढनि ऐं ॿारनि पारां वतन सां मोहबत जो भरपूर इज़हार करण जो सिलसिलो जारी आहे।

0: साल पहले साईं सदाई करे मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। सिंधियों की दुआ यही है, सबसे पहले हमारा सिंध सरसब्ज और शादाब रहे और उसके तवस्सुत से पूरी दुनिया रहे। और उसके बाद कई लोग आए हर वक्त, कोई लंदन भाग गया जिसको खुद ओन नहीं करते, अब उसके लोग जो बात करते हैं अगले दिन खुद लड़ पड़ते हैं एक दूसरे से। ये सिंध की मिट्टी है, ये सुबह ये दरिया सिंध का पानी है जो इस सुबह सिंध को कभी नुकसान नहीं होने देगा। मैं फिर आ जाऊं कि ये आईनी तरीका है, सुबह सिंध की असेंबली कई बार ये रेजोल्यूशन पास कर चुकी है। हाँ, डिबेट करनी है, सौ बिस्मिल्लाह सौ बार करें, हम जवाब देने के लिए तैयार है। जीडीए और पता नहीं कौन सी जमात का नाम लिया, फंक्शनल लीग, फंक्शनल लीग या जीडीए,
1: दोनों
0: जो कभी मुश्तरका अलग अलग ही है। मुझे तो आपके सवाल ही समझ, छोड़े यार इन लोगों को, अब ये पुराने लोग हैं, अब आगे की तरफ चले।
2: सूबो ठाहिण वारो बहस पुराणो आहे, जेकॾहिं कंहिंखे एडवेंचर करणो आहे त सिंध असेंबलीअ मां ठहराउ पास कराईंदो, असां सिंधी हिफ़ाज़त कंदासीं। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी मज़ार क़ाए ते मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल, मुराद अली शाह चयो आहे त असां सियासत खे नाकाम नथा समझूं, सूबे जूं ॻाल्हियूं कंदड़ परे भॼी वेंदा आहिनि या पाण में विढ़ी पवंदा आहिनि। सिंध असेंबली सूबे जे सरहदनि बाबति केतिरा ई भेरा ठहराउ मंज़ूर।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
6: सोना सेहत कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
7: अमर सिंध जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: मैं सबा फैसल। 14 अगस्त वो दिन है जब मुसलमानों के काफिले आज़ादी को मंजिल और उनके ख्वाब को ताबीर मिली थी। काफिले की मंजिल और ख्वाब की ताबीर आज़ादी थी। आज़ादी, आज़ादी जो एक अनमोल नेमत है, जो जिंदगी का हुस्न और निखार है, इंसानियत की बहार।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान।

0: खुशबाश हूंदव ऐं जीअं मूं अॼु ॻाल्हि पई कई त अॼु पूरे पाकिस्तान जे हर नंढे वॾे शहर में शहर सिंगारिया विया आहिनि, रोड रस्ता आहिनि त ही ख़ूबसूरत तरीक़े सां साफ़ सुथरा कया विया आहिनि ऐं स्कूलनि में अॼु क़ौमी ॾिहाड़े खे वॾे जोश जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे, जॾहिं त सरकारी इमारतूं ऐं गैर सरकारी इमारतूं उन्हनि खे कलरफुल लाइटनि सां सिंगारियो वियो आहे। पूरे पाकिस्तान में हिकिड़ो जोश जज़्बो आहे, जेके पॉइंटूं आहिनि घुमण जूं, जेके टूअर जूं पॉइंटूं आहिनि, टूअर जे पॉइंटुनि ते बिल्कुलु हिकिड़ो सुठो माहौल जुड़ियल आहे ऐं माण्हू जेके थर घुमण वञी रहिया आहिनि, के माण्हू कश्मीर घुमण वञी रहिया आहिनि, के कारूंजर घुमण वञी रहिया आहिनि। सो बहरहाल ॾिसूं था केर सां गॾु। हलो, अस्सलाम वालेकुम जी। केर साहब ऐं किथां खां? जी जी भा, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो? अलहमदुल्ला, अलहमदुल्ला, तव्हांजी दुआ लॻी पई आहे। अॼु जश्न आज़ादी जूं तव्हांखे खोड़ सारियूं मुबारकूं
1: हुजनि।
0: महिरबानी महिरबानी, लख थोरा। तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? जी जी, जी जी, जी जी, महिरबानी महिरबानी, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, थैंक यू कॉल करण जे लाइ। ॾिसंदासीं त हाणे असां गॾु कॉल थी कयूं। भाई जन, रेडियो जो आवाज़ घटि कयो थोरो, रेडियो जो आवाज़ घटि कयो। जी केरु साहिब ऐं किथां खां? निसार अहमद जत साहिब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला, मतारा जोड़। ख़ैर मुबारक सॼी सिंध, सॼे पाकिस्तान, पूरी दुनिया खे जश्न आज़ादी मुबारक हुजे ऐं असांजे प्यारे वतन पाकिस्तान जो अॼु 79वां जश्न आज़ादी ॾींहुं आहे ऐं उन में पाण सभई अॼु ॾाढे जोश ऐं जज़्बे सां आहियूं। अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? जत साहब, भाभी ॿुधे पई प्रोग्राम खे? अच्छा, ठीकु आहे, लख थोरा असांजी प्यारी भेण जूं महिरबानी आहिनि जो उहा ॿुधे पई, तव्हां ॿुधो पिया, लख थोरा साईं। महिरबानी महिरबानी, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, महिरबानी। ओके जनाब, यूनिस बकारी जो साथ जारी आहे ऐं जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जे स्टूडियोज में अवां जी कॉल्स जी अचण जो सिलसिलो ॾिसूं था हाणे कॉल ते केर आहे असां सां गॾु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, इहो सर यूनिस बकारी, इहो भाउ गुलाम कादर गिरान खे मुबारकूं विस्तरी, भाउ गुलाम कादर गिरान खे बि लख लख मुबारकूं।
0: जी जी, गुलाम कादर गिरानो साहब यकीन ॿुधे पियो ऐं रेडियो ते हाणे कॉल बि कई हुई ऐं हाणे बि ॿुधंदो हूंदो, तव्हांजी मुबारकूं पहुचायूं था मिठा माण्हू, महिरबानी। जी हाकिम, महिरबानी, मिठा साईं। ओके जनाब, अॼु अवां सां अवां जूं ॻाल्हियूं कयूं पिया ऐं लख थोरा उन्हनि समूरनि महिरबानी जा जेके कॉल्स करे रहिया आहिनि। नंबर हिकु दफ़ो ॿीहर मां रिपीट करियां, 0331252578 6, 2311-5750-786 हिकिड़ो इहो नंबर आहे। हिन खां अलावा असांजो ॿियो नंबर आहे 0313331185। ॿिन्ही नंबरनि मां जंहिं नंबर ते कॉल कंदो तव्हांजो नंबर कंदासीं रिसीव। तव्हां सां कंदासीं हाल अहिवाल, छो त अॼु आहे आज़ादीअ जो जोश। हिन महिल कनाए रहिया आहियो जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जे चार रेडियो स्टेशननि खे। जी हा, हिकु ई वक़्तु जी एफ एम मातली, जी एफ एम मटियारी, जी एफ एम सकरंड ऐं जी एफ एम महराबपुर ते गूंजंदड़ हीउ आवाज़ अवां पंहिंजो ॾिसूं था केरु आहे असां सां गॾु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। साईं, पासे में रेडियो वॼे पियो, हुन जी आवाज़ घटि करियो या हुन रेडियो खे परे करियो। जी जी, रेडियो रेडियो जो आवाज़ डबल पियो थिए, थोरो हुनखे परे कयो। जी केरु साहब ऐं किथां खां? कुर्बान कश्मीरी साहब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला।
3: साईं अलहमदुल्ला, सभु ख़ैर, तव्हां ॿुधायो, ठीकु ठाक, तव्हांखे लख लख मुबारकूं हुजनि।
0: ख़ैर मुबारकूं तव्हांखे, जश्न आज़ादी जूं खोड़ सारियूं मुबारकूं हुजनि।
3: साईं साईं, वॾी वॾी महिरबानी, वॾी वॾी महिरबानी साईं।
0: अवां सां गॾु ॿियो रेडियो केरु थो ॿुधे साईं?
3: साईं, मुंहिंजी नंढड़ी छोकिरी आहे, दुआ नालो आहे।
0: दुआ बेबी, दुआ खे बि जश्न आज़ादी जूं मुबारकूं हुजनि। जी जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, लख थोरा।
3: मुंहिंजो नंढो पुटु आहे उस्मान गनी,
0: उस्मान गनी खे खोड़ सारियूं जश्न आज़ादी मुबारकूं।
3: साईं वॾी वॾी महिरबानी,
0: तमामु घणी महिरबानी कश्मीरी साहब, लख थोरा तव्हां असांखे ज्वाइन कयो ऐं कॉल कई।
3: साईं वॾी महिरबानी
0: मोहबतूं मोहबतूं ख़ुशि हुजो आबा

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: रंग रौनकू ऐसी असाजे हारिय साई ताहिन आबाद हाने इन जो अन्याब वधी का मान वधायन लाए तवासा गद आए सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणु छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अन्याब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: डुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई औरतुन ऐ बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-32-41-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लगण लाइ खुश खबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लगरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
8: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: हुन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
10: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: जी जनाब वेलकम वेलिकार खुश आमदीद जी एफएम 88 रेडियो नेटवर्क तरफा आजादी जो जोश ऐं आजादी जोश ऐं जज्बे सां मल्हाईजंदड़ अॼो के ॾींहं खे यकीनन पूरे पाकिस्तान में ज़बरदस्त तरीक़े सां सेलिब्रेट करे रहिया आहिनि। अहिड़ी रीत जी एफएम 88 रेडियो नेटवर्क बि तमामु सुहिणे नमूने सेलिब्रेट करे रहियो आहे, तमामु घणो जोश ऐं जज़्बो आहे। जेकर तव्हां मूंखे ॿुधो पिया, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हिकु ई वक़्तु जी एफएम 88 रेडियो नेटवर्क जो जी एफएम मातली, जी एफएम मटियारी, जी एफएम मेहरापुर ऐं जी FM सकरण जे स्टूडियोज़ मां ही शो अवांजी ख़िदमत में पेश थी रहियो आहे। जेकॾहिं तव्हां असांखे ॿुधो पिया त कॉल करे सघो था। जी हा, असांजो नंबर नोट करे वठो 0331252578 6 ॿुड़ी 331-25-25-786 इहो नंबर आहे। ऐं ॿियो जेको नंबर आहे उहो आहे जी हा 0313331185 ॿुड़ी 3-1-3-3-3-1-1-1-8-5 इहे असांजा ॿ नंबर आहिनि जेके तव्हां नोट करे वठो ऐं असांखे कॉल करे ॿुधाए सघो था त अॼोको अव्हां जो ॾींहुं कीअं पियो गुज़रे। ऐं हा, अॼु पूरे पाकिस्तान में जोश ऐं जज़्बो आहे, ॾाढो सुहिणो माहौल लॻो पियो आहे। काफ़ी महिरबानी असांखे ॿुधनि पिया, जिन जिन महिरबानी असांखे जिते जिते बि जॉइन कयो आहे, सभिनी जूं महिरबानियूं, सभिनी जा वॾा वॾा, सभिनी जा किरोड़े किरोड़े जो तव्हां असां सां शामिल थी चुका आहियो। सो जनाब यकीन असां जीअं पूरी दुनिया जा ख़ुशनसीब असां उहा क़ौम आहियूं जेका पाकिस्तानी क़ौम आहे ऐं अॼु आज़ादी साण असां पंहिंजो वक़्तु गुज़ारियूं पिया। ऐं दोस्तो महिरबानो, क़दरदानो, भेनरो ऐं भाइरो, आज़ादी जो जेकॾहिं अव्हांखे अहसासु वठणो आहे त पिंजरे में बंदि हुन क़ैदी हुन पखीअ खां पुछो त आज़ादी छाहे थींदी, या तव्हांखे आज़ादी जो अहसासु पुछणो आहे त जेल में बंदि कंहिं माण्हूअ खां पुछो त हुन जो क़ैद कीअं थो गुज़रे। जेकॾहिं आज़ादी जो तव्हांखे अहसासु पुछणो आहे त उन शख़्स खां पुछो जेको कड़नि में क़ैद आहे। पर जेकॾहिं आज़ादीअ जो असुल मज़ो आहे उहो इहो आहे त पाण सभु आज़ाद आहियूं, अलहमदुल्ला ख़ुश गुज़ारियूं पिया। कॉल अची चुकी आहे, ॾिसूं था केरु आहे असां सां गॾु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। केरु साहिब ऐं किथां खां? नालो छा आहे साईं? अर्जन राठौड़। ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो? हा, जश्न आज़ादी मुबारक हुजे। ख़ैर जो मुबारकूं, ख़ैर जो मुबारकूं, महिरबानी, शुक्र आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहीं? जी जी, शुक्र आहे, ठीकु आहियां। तव्हां ठीकु आहियो? अच्छा, बिल्कुल ठीक हुजो, अलाह करे खुश हुजो। महिरबानी। हा, ख़ैर मुबारकूं तव्हांखे, जश्न आज़ादी जे ईद जो मुबारकूं हुजनि। थैंक यू, थैंक यू। नालो ॿुध, नालो छा आहे तव्हांजो? तुंहिंजो नालो छा आहे वरी ॿुधायो? हा, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीकु आहे, महिरबानी महिरबानी साईं। लख थोरा साहब, हा, शुक्र शुक्र, मौलवी साहब खुश हुजो, महिरबानी। लख थोरा, अलाह करे आबाद हुजी, महिरबानी। ओके जनाब, यूनस बकारी जी महफ़िल अवां सां जारी सारी, असांजो बाक़ी 15 मिंट जो साथ आहे। ऐं चारि लॻी 44 मिंट थिया आहिनि। ठीकु, 15 थोरी देरि न शॉर्ट ब्रेक हूंदो, हुन खां पोइ वरी वञूं कालू वठंदासीं की ॾियणु वञो, छो त प्रोग्राम आहे जारी सारी। हिकिड़े नंढड़े ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदो अवांजो पंहिंजो यूनस बकारी। तेसी ताईं असां सां गॾु रहिजो। ऐं हा दोस्तो, पाकिस्तान ज़िंदाबाद जूं ॻाल्हियूं कंदासीं। ओके जनाब, जी जनाब, पर कॉल हुन दौरान अची रही आहे, सो मां कॉल अटेंड करण जी कोशिशि कयां थो, ॾिसूं था त कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां? रिज़वान साहब, छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो?
1: अलहमदुल्ला, तव्हां ॿुधायो?
0: अलहमदुल्ला, दुआ लॻी पई आहे। जश्न आज़ादी खोड़ सारियूं मुबारकूं हुजनि।
1: ख़ैर मुबारक, तव्हांखे मुबारक हुजनि।
0: ख़ैर मुबारक, महिरबानी। लख थोरा साईं, तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: घर वारा आहिनि।
0: घर वारा, घर भाती ॿुधनि पिया। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। जी छा थे चयो तव्हां?
1: मिली नगमो ॿुधायो।
0: मिली नगमो बिल्कुलु ॿुधायूं था। हाणे हिकिड़ो नंढो कमर्शियल ब्रेक आहे, हुन खां पोइ मिली नगमो बिल्कुलु ॿुधायूं था। थैंक यू मिठा माण्हू, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, लख थोरा तव्हांजा। तव्हां असां सां गॾु रहिया आहियो ऐं असां सां गॾु हुजो, तमामु घणियूं महिरबानी। ऐं हाणे ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी, केरु साहब पिया ॻाल्हायो? छा हाल आहे गुल मोहम्मद खासकेली साहब? ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, जश्न आज़ादी जूं मुबारकूं हुजनि। ख़ैर मुबारकूं, ख़ैर मुबारकूं, महिरबानी। लख तौर अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
2: मुंहिंजो भाइटो अली हसन खासकेली।
0: ॿियो केरु आहे? अली हसन खासकेली थो ॿुधे बसि। महिरबानी, तव्हां सभिनी जो, तव्हां सभिनी खे जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू जी जनाब। इन ते ब्रेक जो टाइम थी चुको आहे, बिल्कुल ब्रेक वठूं था ऐं बिना ब्रेक बाक़ी ॻाल्हियूं कंदासीं केॾे न वञ।
3: अजरक के रंगो से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ो से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज़।
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
5: जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
6: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
7: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
8: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर बिच्ची जो मान वधाई।

सिंध समेत समूरे मुल्क में 79 ॾींहं जश्न आज़ादी क़ौमी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। इस्लामाबाद में 31 तोपनि ऐं सूबाई राजधानी में 21 तोपनि जी सलामीअ सां ॾींहं जी शुरूआत मुल्की सलामती ऐं खु़शहालीअ लाइ ख़ुसूसी दुआऊं बि घुरियूं वयूं। सरकारी ऐं निजी इमारतनि ते क़ौमी परचम बि फड़काया विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न जूं तक़रीबूं, आज़ादी जी खुशीअ में केक बि काटिया विया। नौजवाननि, नारियुनि, ॿुढनि ऐं ॿारनि पारां वतन सां मोहबत जो भरपूर इज़हार करण जो सिलसिलो जारी आहे।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील हाशमी और इस 14 अगस्त को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं अपने तमाम नौजवान भाइयों को भी, जो छोटे हैं उनको भी, जो बड़े हैं उनको भी, कि जहां तक हो सके इस मुल्क में अपने प्यारों में, अपने दोस्तों में, अपने मोहल्ले में मोहब्बत और अमन की बात को फैलाएं।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान।

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सना और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक हो। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारी जो यूथ है, जो 65% है ऑफ द पॉपुलेशन, हमें ये सोचना चाहिए कि यूथ को हमने किस तरह से अपना एसेट बनाना है। सोच के बाद हमें एक हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है और फिर उस पर अमल पैरा होना भी बहुत ज़रूरी है।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान।

0: मिट्टी जा रंग रौनकू ए जरखेजी असाजे हारी साई ताहन आबाद हाने इन जो अन्याब वधी का मान वधायन लाए तमासा गदवाए सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जेजो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अन्याब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: दिल जान पाकिस्तान हमारा देश हमारा मान दिल जान पाकिस्तान

बातें करेंगे, आपको जज्बाए जुनून को जगाएंगे और आपके साथ बहुत सारी बातें करने के साथ साथ आपसे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो

0: ना आज हमारे जो लिस्टर्स हैं उनकी वो क्या कहते हैं कि आज थोड़ी दिमाग को भी जंग है, उनकी दिमाग
1: उनको
0: दौड़ाएंगे दिमाग को आज,
1: क्योंकि
0: ऐसे बहुत कम होता है कि हम उनके दिमाग को दौड़ाते नहीं है, उनके दिमाग को चलाते नहीं है, तो वो भी नहीं चलाते और सुस्ती में रह जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आज
1: सोने ही दो।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जनाब

0: आजादी का दिन है तो आज तो आप हर चीज से आजाद हैं भाई, करें मैसेज और बताएं कि कौन कौन हमारे साथ मौजूद है इस आजादी के दिन पे। तो कहते हैं कि जी ना पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है, ना पूछो जमाने से कि हमारी क्या कहानी है, पहचान तो बस ये है कि हम पाकिस्तानी है। तो जी पाकिस्तानी होने का सबूत दे और हमें ज्वाइन करें। और जैसा कि अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं तो ये जी बताएंगे सर अशफाक आपको।
1: चले जनाब हमारे साथ मसरूर अहमद हैं कराची से। मसरूर अहमद आरजसना जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। सना जी आपने पसंद पर कोई भी मिली नगमा सुना दो।
0: अरे वाह, ये
1: मिसेज यहाँ पे छोड़ दिया, मैंने भी आपको छोड़ दिया था, देखें
0: जी बिल्कुल ऐसे ही।
1: सेकंड मैसेज अब्दुल रजाक साहब का, कहते हैं प्यारे

0: पाकिस्तान जी 79 वरियन जश्न आज़ादी मुबारकबाद पेश कयूं था पारा मोहम्मद खान कुंभार हाली पोट्रो स्टॉप खां तो जनाब असांखे ॿ मैसेज अची चुका आहिनि सना त बिल्कुलु हाणे तव्हां पंहिंजी पसंदि जो मिली लॻो ॿुधायो त जीअं मां प्ले करे सघां
1: मैं क्या बताऊँ आपको सारे मेरी लग में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन मुझे ना आप ऐसा मेरी लग में सुनाएं
0: सोनी
1: यार वो हमें सुना ना दे क्योंकि कुछ वर्णन ऐसे होते हैं मुझे ये सुन के बहुत नींद आ रही होती है तो मैं कहती हूँ कि बंदा ऐसे मतलब मेरी लग में चलाए और सुने जो सोते वो को भी जगा दे तो कोई ना कोई ऐसा क्यों ना हम प्ले करेंगे जो यार सो भी रहे
0: हो ऐसा जरूर आप मुझे बताएं तो फिर मैं तभी प्ले करूंगा ऐसा तो मैं भी आज प्ले करने वाला तो दोस्तों देखे मैंने साला को किस मुश्किल में डाल दिया वैसे
1: बहुत मुश्किल वाला काम है क्योंकि एक तो मुझे और मेरी बात किसी और को पसंद
0: तो
1: बड़ा मुश्किल काम है
0: बिल्कुल मुश्किल काम है लेकिन ऐसा होता है इस तरह के कामों में आज आजादी का जश्न हम मना रहे हैं तो सना कोई मिली नगमा सोचती हैं तब तक हम आपको अपनी पसंद मिली नगमा सुनाते हैं कैसे
1: जरूर जरूर
0: ऐसे ही होगा
1: ऐसे ही होगा
0: चले जनाब हम आपको सुनाते हैं जज्बा जनू तो हिम्मत नहार जस्तजू जो करे वो छुए आसमान तो आसमान छूने के लिए आप रेडी हो जाइए क्योंकि हम आपके साथ और आप हमारे साथ हैं तो जाय कीजिए जबरदस्त मिली नगमा

0: बोलो। तो बिल्कुल जनाब सना, हम अपनी पहचान बिल्कुल नहीं भूलते, हम पाकिस्तानी हैं और हमेशा हम पाकिस्तानी रहकर ही पाकिस्तान की खिदमत करने का अजम का इरादा करते हैं आज। और सना ये बताइए कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या सोच रखा है कि आप अपनी लाइफ में ऐसा कौन सा काम करेंगे जिससे पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हो और हम पाकिस्तानी खिलाने पर फख्र।
1: ये इतने मुश्किल आप सवाल ढूंढ के चला लिए, तो ये मैं आपको कैसे बताऊं कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं।
0: मतलब आप अपनी फील्ड में जो भी काम कर रही हैं।
2: It's 5:30 PM. This time check.
3: अपना आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: पाकिस्तान बनाने वाले
5: रखी जिन्होंने बुनियाद, आज भी हैं याद।
4: पाकिस्तान बनाने वाले
6: सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान,
1: तहरीके पाकिस्तान। इस तरीके से कोई और भी ये कहे तो मेरी तो ये विषय है, मैं अभी जहां जॉब कर रही होती हूं कि मेरे हर टारगेट पूरे हो ताकि आउट ऑफ कंट्री जब मेरा नाम जाए तो ये हो कि मतलब पाकिस्तानी एक लड़की ने अपने ही ब्रांच में रहकर ये चीज टॉप की, तो मेरे साथ तो यही इशू।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए सना के लिए, इतना बड़ा जबरदस्त ये कह रही है कि मैंने काम किया। तो जनाब चलते हैं कमर्शियल ब्रेक के जाने पे, टाइम चेक हमारे पास साथ इस वक्त मौजूद है, तो टाइम चेक के बाद हम ब्रेक पे चलते हैं, फिर वापस आते हैं आपके साथ।
2: It's 5:30 PM.
7: पाकिस्तान के अजीम रहनुमा, मुदीर और फिकह इस्माइली के मजहबी पेशवा थे।
8: आपकी पैदाइश 2 नवंबर 1877 को कराची में हुई।
7: उन्होंने न सिर्फ बरसगीर पाक व हिंद की खुशहाली के लिए बेलौस खिदमात अंजाम दी बल्कि तहरीक पाकिस्तान में भी अहम किरदार अदा किया।
8: सर आगा खान सोम मुस्लिम लीग की बुनियाद रखने में बरसगीर के मुमताज रहनुमाओं में नुमाया रहे। आप मुस्लिम लीग के पानी सदर की हैसियत से 7 साल तक खिदमात सर अंजाम देते रहे।
7: 1906 में उन्होंने 35 नामवर मुसलमानों के एक मुमताज वफ्द की शिमला में क्यादत की और बरसगीर के मुसलमानों की जानिब से एक यादाश्त पेश की। अपने तारीखी खिताब में उन्होंने बरतानवी वायसराय पर जोर दिया कि मुसलमानों को एक जुदागाना कौम के तौर पर तस्लीम किया जाए, नेज उन्हें लोकल बॉडीज और कानून साज काउंसिल दोनों में नुमाइंदगी दी जाए।
8: दूसरी जानिब ऑल इंडिया मुस्लिम का क्याम 1906 में अमल में आया और सर आगा खान को उसका अव्वलीन सदर मुंतखब किया गया। सर आगा खान को लंदन में होने वाली गोल मेज कॉन्फ्रेंस के लिए मुसलमानों के तर्जुमान के तौर पर मदऊ किया गया, जहां अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए सर आगा खान की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। सर आगा खान सोम को तख़फीफ़े असलहा की कॉन्फ्रेंस में इंडिया की नुमाइंदगी का एजाज भी हासिल हुआ और उन्हें मुतफ़िक़ा तौर पर लीग ऑफ नेशंस का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया, जिसे बाद अज़ां अक़वामे मुत्तहिदा का नाम दिया गया।
7: आगा खान सोम की क़यादत में बरसगीर पाक व हिंद में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए बेशुमार इदारे कायम किए गए। आज आगा खान एजुकेशन सर्विस पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम सैकड़ों की तादाद में आगा खान स्कूल कायम हैं। इसके साथ साथ आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में हिफ्ज़ान सेहत की खिदमात के अलावा मेडिसिन और नर्सिंग की तालीम भी दी जाती है।
8: तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोम 11 जुलाई 1957 को इंतकाल कर गए और उन्हें मिस्र के शहर असवान में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
7: तहरीक पाकिस्तान के लिए सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान की खिदमात एक अजीम कुव्वत का सरचश्मा थी जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा।
4: पाकिस्तान बनाने वाले
5: रखी जिन्होंने बुनियाद, आज भी हैं याद।
4: पाकिस्तान बनाने वाले
9: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान। दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
10: तक इसमें एडमिशन नहीं लिया तो ये पैगाम सिर्फ आपके लिए है। आपके शहर मीरपुर खास में भिटाई इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन मौका लेकर आया है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंग्लिश और बीएस पब्लिक हेल्थ के एडमिशन जारी हैं। मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, इंडोर गेमिंग्स, कैफेट एरिया اور بہترین کیمپس فیسلٹیز کے ساتھ معیاری تعلیم آپ کے اپنے شہر میں. میرٹ بیس اسکالرشپ ایڈمیشن فیور پر 50% آف اور سیمسٹر فیور پر 10% کا خاص آف بھی دستیاب ہے. اپنا مستقبل بہتر بنائیں, آج ہی بھٹائی انسٹیٹیوٹ جوائن کیجیے. لمیٹڈ سیٹس, اپلائی ناؤ. مزید معلومات کے لیے موبائل نمبر 03222841047.
11: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی, ہانے پہجی اسکن کے دیو ہکن اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین وتی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم, خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی. بہترین رزلٹ حاصل کر لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. White Ash Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: का एड्रेस सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान लेजर अखिंजी अस्पताल सर सैयद रोड गरीबाबाद मीरपुर खास मोबाइल नंबर 03032617077।
1: असीं प्यारे मुल्क पाकिस्तान जे 79वें जश्न आज़ादी जे मुबारक ॾींहं ते पंहिंजे हरदिल जो साहब ओठ खान साहब दीन मोहम्मद जूणे जो साहब जे ॻोठ में रहंदड़ जूणे जो बिरादरी ऐं मुल्क पाकिस्तान में रहंदड़ ख़ासखेली बिरादरीअ खे दिलि जे गहराइयुनि सां लख लख मुबारकूं ॾियूं था। पारां ग़ुलाम फारूक ख़ासखेली, अली गुल ख़ासखेली, मोहम्मद यासीन ख़ासखेली, काउंसलर यूसी सिंधड़ी, ॻोठ हाजी मोहम्मद उर्स ख़ासखेली, यूनियन काउंसिल सिंधड़ी, तालको सिंधड़ी, ज़िलो मीरपुर खास।
2: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान। दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान,
3: दिल जान पाकिस्तान।
4: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम,
3: दिल जान पाकिस्तान।
5: दिल और जान से बनाते हैं क्योंकि हमारा आजादी का दिन है, इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है, कोई दिन नहीं है। ये एहसास दिलाता है दिन के हमें इससे पाकिस्तान से, वरना कुछ भी नहीं।
6: हम लोग यानी यूनिवर्सिटीज में फंक्शन वगैरह होते हैं, वो अटेंड करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और लाइक घर में सजाना, अपना कपड़े अच्छे पहनना, ये सब कुछ होता रहता है पूरे दिन। बेहतरीन किस्म का दिन है, हमें अपनी मुकम्मल तौर पर आजादी है कि हम हर जगह जा सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, सब काम अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं।
7: ऐसी वहाँ पे आजादी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते। इसका ख्याल करें आप, अल्लाह पाक ने हमें तोहफा दिया है।
8: हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की है और जदोजहद करके कुर्बानियां देकर ये वतन हासिल किया है, तो हमें चाहिए कि इस मुल्क का ख्याल रखिए।
9: दिल जान।

के नहीं करते। अगर वाकई इन तमाम सवालों का जवाब हाँ है तो वाकई आप बहुत खुशकिस्मत हैं और बाकी आप अपने पाकिस्तानी होने का हक अदा करें।

0: लेकिन अगर इन तमाम सवालों का जवाब अनफॉर्चुनेटली ना है तो फिर हमें सोचना चाहिए और जरूर सोचना चाहिए। यकीन जाने पाकिस्तान की तरक्की में हमारा छोटा सा किरदार भी बहुत बड़ा बन सकता है अगर हम प्योर पाकिस्तानी सच्चे पाकिस्तानी होने के नाते इन तमाम चीजों पर अमल करें। क्यों सना?
1: बिल्कुल ऐसे जो कहते हैं कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो ऐसे ये जी कि अगर हम अपना काम मेहनत से करते हैं, खुद हमारे पास इतने सारे सवाल जो सर ने पूछे हैं, अगर हमारा जवाब हाँ में है तो यकीनन आप पाकिस्तानी कहलाने के लायक भी हैं। क्योंकि रहना सिर्फ एक रहना ही पाकिस्तान

0: अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग से ही पाकिस्तानी, तो हमारा काम है कि हम अपना दिलो जान से जो है ना अपना काम पूरा करें।
1: और देखिए ना, हर बंदा ही अपने मुकद्दर का सितारा है।
0: बिल्कुल।
1: अभी हम ये कहें कि नहीं मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है,

0: ऐं सिरखेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक बान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहियूं सोना यूरिया ग्रेनुलर। जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए।
1: सोना सिहत कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं।
2: असीं प्यारे मुल्क पाकिस्तान जे 79वें जश्न आज़ादी जे मुबारक ॾींहं ते पंहिंजे हरदिल अज़ीज़ क़ाइद साबिक़ सेनेटर मोहतरम जनाब मोहम्मद असद अली ख़ान जुणे जो साहब, मोहतरम जनाब महदी मोहम्मद ख़ान जुणे जो साहब, ॻोठ ख़ान साहब दीन मोहम्मद जुणे जो साहब जे ॻोठ में रहंदड़ जुणे जो बिरादरी ऐं मुल्क पाकिस्तान में रहंदड़ ख़ासखेली बिरादरीअ खे दिलि जे गहराइनि सां लख लख मुबारकूं ॾियूं था। पारां ग़ुलाम फारूक ख़ासखेली, अली गुल ख़ासखेली, मोहम्मद यासीन ख़ासखेली, काउंसलर यूसी सिंधड़ी, गोठ हाजी मोहम्मद उर्स खासखेली, यूनियन काउंसिल सिंधड़ी, तालको सिंधड़ी, जिलो मीरपुर खास।
3: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान। दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
4: वेलकम, मेरा नाम है अहमद जान साहब और 14 अगस्त के हवाले से सबसे पहले सबको बहुत बहुत मुबारक हो और बस दुआ करता हूँ कि इस मुल्क ने मुझे तो सर छुपाने के लिए एक जगह, एक पहचान, एक नाम दिया है। दुनिया भर में जहाँ भी जाता हूँ इस मुल्क की वजह से पहचाना जाता हूँ और इस मुल्क इस पाक धरती से इतनी मोहब्बत है कि जिसका अंदाजा नहीं। तो बस मैं यही पैगाम दूंगा कि इस 14 अगस्त को भी हर 14 अगस्त की तरह खूबसूरत, हरा भरा और हसीन बनाए। हर साल 14 अगस्त और जोशो खरोश से मनाया जाता है, इस साल भी नजर आ रहा है। तो बस मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा 14 अगस्त के हवाले से। पाकिस्तान जिंदाबाद।
3: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान। दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
5: वतन के लिए
6: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार, हुब्बुल वतनी के अशार,
5: ये अर्ज़ को बयाबानी। जमीन का प्यार नहीं सिर्फ खेल लफ्जों का, मैं इसकी खाक पे कुर्बान नहीं तो कुछ भी नहीं।
6: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार, हुब्बुल वतनी के अशार,
5: वतन के लिए
3: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान। दिल जान पाकिस्तान।

0: समझो ना ये आसान मिला है, देखे हजारों जान मिला है, खाक में पहले लहू मिला था तब जाके पाकिस्तान मिला है। बिल्कुल जनाब, हमारा प्यारा प्यारा पाकिस्तान हमें बहुत कुर्बानियों के बाद मिला है और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला से तमाम नज़रें बस से बचाए, दुश्मनों की नज़रों से बचाए और जनाब नापाक इरादों से बचाए। हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और हमेशा कायम मुकाम रखे।
1: बिल्कुल ऐसा ही है।
0: हाँ तो सनाब, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब यकीनी तौर पर लोग सोच रहे होंगे और
1: सवाल तो मैंने पूछा था और सवाल मैं दोबारा पूछ लेती हूँ ताकि आपके पास 5 मिनट और दे दिए जाएंगे आप लोग। तो जी सवाल मेरा यही था कि आपने मुझे बताना है कि पाकिस्तान के जो फ्लैग है, झंडा है, उसका रंग हरा क्यों रखा गया है, आपने इस तरह आपने बताना है जी। तो
0: बिल्कुल वो देखिए, मसरूर अहमद का मैसेज आया है कि सवाल का जवाब है इस्लाम।
1: अच्छा,
0: तो ये कहाँ कहाँ तक ठीक है अभी बताइएगा नहीं जवाब, लेकिन
1: नहीं, ये कुछ हद तक, मतलब अगर आप कहें तो कुछ हद तक, मतलब सही है, करीब करीब है, मगर
0: ऐसे परसेंट इनको कहेंगे कि ठीक है,
1: नहीं 100 में से तो बहुत पीछे हैं, नहीं बहुत पीछे, हाँ 10%, जी जी
0: 10% आप थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो इसका जवाब अभी थोड़ा सा सीगा राज में रखा गया ताकि आप सबको क्यूरियोसिटी हो कि भाई आखिर का जवाब क्या है। तो बिल्कुल जनाब, तब तक आप हमारे साथ रहिए और हमें कॉल करने की भरपूर कोशिश कीजिए और हमें मैसेज भी कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे जो कि सना आपको बता चुकी है ना।
1: अच्छा, जब आप लोग मुझे कॉल करें तो मैं यही चाहूंगी कि कॉल करने के साथ आप लोग मुझे जो है ना पाकिस्तानी जो तराना है ना, आप उनमें से आप में से कोई मुझे तराना जरूर सुनाए।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि स्कूल की तो यार हमें याद करना चाहिए ना, तो स्कूल के तराने यार हमें बहुत याद आते हैं। अभी हम लोग बड़े हो गए हैं तो हर जगह तराना नहीं सुनने को मिलता, तो मैं चाहूंगी जो लिसनर्स मुझे कॉल करें तो वो मुझे तराना जरूर सुनाएं।
0: बिल्कुल, तराना भी जरूर सुनाएं और अपनी खूबसूरत आवाज में हमें कोई मिली नगमा सुनाएं।
1: जरूर जरूर,
0: क्योंकि देखें हम जो आज इकट्ठे हुए हैं तो ये हमारी कुर्बानियों का, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का समर है कि आज हम आजाद वतन में सांस ले रहे हैं और अपने तमाम काम काज बगैर किसी रुकावटों के कर रहे हैं और भरपूर आजादी के मजे ले रहे हैं। लेकिन अगर हम गुलाम होते तो फिर सोचे क्या होता है, गुलाम कौमों के हाल क्या होते हैं।
1: बिल्कुल ऐसे ही है,
0: आज हमें सजदा शुक्र अदा करना चाहिए कि हम बिल्कुल आजाद हैं। सना देखे ना, हिजरत के रास्ते में कितने ही खानदान आपस में बिछड़ गए थे, कितने ही माओं के बच्चे, कितने ही सुहाग उजड़ गए थे, कितने ही गोदें खाली हो गई थी, कितने लोग अपने प्यारों से जुदा हो गए थे, कितने लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था,
1: कुर्बान कर दिया था जी
0: आजादी के लिए, आजादी की
1: छोड़ के चले गए थे और अपना घर बार तो दूर की बात है, मुल्क छोड़ दिया था यार उन्होंने, देश छोड़ दिया था, अपना शहर छोड़ दिया था,
0: अपने खून के रिश्ते छोड़ दिए थे, अपने खून के रिश्ते और कुर्बानियां दे दी थी। तो आज हम जब आजादी से सांस लेते हैं तो हमें उन तमाम लोगों को याद करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी थी, तमाम हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखना चाहिए और अपने बच्चों को जो हमारे जेंजी हैं उनको उनकी कहानियां बतानी चाहिए, उनकी किस्से बताने चाहिए ताकि वो भी अपने जो हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां उनसे आशना हो और उन्हें पाकिस्तान की कदर हो
1: जी। क्योंकि अगर आज हम उनको बताएंगे तो कल को वो हमें भी याद कर पाएंगे ना, अगर हम आज उनको नहीं बताएंगे तो कल हमें क्यों याद करेंगे।
0: बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब हमें आपकी कॉल्स का बिल्कुल बेचैनी से वेट
1: तो
0: है।
1: कहते हैं ना कि यार वो मैं एक शेर अर्ज करूं,
0: बिल्कुल आप अर्ज कर सकते हैं, बहुत सारे शेर अर्ज कर सकते हैं।
1: कहते हैं कि इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं,
0: वाह वाह,
1: इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, बेबाकी को हक गोली से घबराता है मोमी।
0: क्या बात,
1: बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर तो हम लोग मतलब डर जाते हैं कि यार आगे जाके क्या हो क्या नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आजाद है, आपकी सोच आजाद है, मरना तो आपने वैसे ही एक दिन है, तो क्यों ना आप जिंदगी को ऐसे जिए कि आज आपका आखिरी दिन हो।
0: आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में हम पाकिस्तान के लिए वो सब कुछ कर जाएं जो कि हम सोच रहे हैं कि हम करेंगे करेंगे करेंगे लेकिन कर नहीं पाते,
1: कर नहीं
0: तो
1: पाते,
0: हम कर गुजरे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो सना बस अब मेरा बहुत ही फेवरेट ट्रैक मैं चलाने लगा हूँ,
1: चलाएं,
0: बचपन में सुना करते थे।

0: मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के अशार,
1: ये अर्ज़े को हो बयाबान दयारे संग समर, ये अर्ज़े को हो बयाबान दया।
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़,
3: ब्रॉट टू यू बाय सोना जूलिया।

पाकिस्तान जी उणियासी जशन आज़ादी जी शानदार शुरुआत कराची लाहौर पिशावर कोटिया इस्लामाबाद में रंगारंग तकरीबू शानदार आतशबाजी जा मुजाहरा इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ ए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर यादगार फतह जो इफ्तिताह कर छो तकरीब में इत्तेहाद यकजहती कौमी वहदत की खूबसूरत अकासी सर्विसेज चीफ वफाकी वजीरन सेनेट चेयरमैन कौमी असम्बली के स्पीकर आला सिविल ए अस्करी अमलदार समेत गैर मुल्की सफारतकार शिरकत तकरीब में यादगार फतह की तमीर बाबत दस्तावेजी फिल्म भी दिखारी वही हवाई फौज के शाहीन जो शानदार फ्लाई पास

0: शहर मीरपुर पास में भिटाई इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन मौका लेकर आया है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में BS कंप्यूटर साइंस, BS इंग्लिश और BS पब्लिक हेल्थ के एडमिशन जारी है। मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, इंडोर गेमिंग, कैफेट एरिया और बेहतरीन कैंपस फैसिलिटीज के साथ मयारी तालीम आपके अपने शहर में। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एडमिशन फेवर पर 50% ऑफ और सेमेस्टर फेवर पर 10% का खास ऑफ भी दस्तयाब है। अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाएं, आज ही भिटाई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। लिमिटेड सीट्स, अप्लाई नाउ। मजीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 03222841047।
1: असीं प्यारे मुल्क पाकिस्तान जे सी हैं जश्न आजादी के मुबारक डीं ते पंहिंजे हड़ाब गोठ खान साहब दीन मोहम्मद जूणे जो साहब जे गोठ में रहंदड़ जूणे जो बिरादरी ऐं मुल्क पाकिस्तान में रहंदड़ खास खेली बिरादरी के दिल जे गहराइयुनि सां लख लख मुबारकूं ॾियूं था। पारां गुलाम फारूक खास खेली, अली गुल खास खेली, मोहम्मद यासीन खास खेली, काउंसलर यूसी सिंधड़ी, गोठ हाजी मोहम्मद उर्स खास खेली, यूनियन काउंसिल सिंधड़ी, तालको सिंधड़ी, ज़िलो मीरपुर खास।
2: खुशखबरी हाने अवां के परेशान थण जी का भी जरूरत ना आहे। जे करे तवां के भी बीमारी में मुब्तला आयो या बीमारी पुरंद होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई। जुमो मोकल है। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 03062447700।
3: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान। दिल जान पाकिस्तान, दिल जान।

0: alaikum everyone. Mera naam hai Ali Safina and main tamam Pakistaniyon ko this Independence Day pe bahut bahut mubarakbaad dena chahta hu. It's a very special Independence Day for all of us. So mera khayal hai keeping the current situation in mind, jo hamare aam taur ke jo halaat hain unko agar maddenazar hum rakhe to mera khayal hai is time pe sabko unity ki sabse zyada zarurat hai. Hame zarurat nahi hai ki hum ek dusre se juda ho jaye. Abhi bhi hame bahut kuch seekhna hai, aage badhna hai. Hum sabko sochna chahiye is pe and meri taraf se once again 14th August sabko bahut bahut mubarak.
1: Dil jaan Pakistan, hamara desh hamara maan. Dil jaan Pakistan, dil jaan Pakistan. Dil jaan Pakistan, hamara desh hamara maan. Dil jaan Pakistan, dil jaan Pakistan.
0: वेलकम, मेरा नाम है अहमद जान साहेब और 14 अगस्त के हवाले से सबसे पहले सबको बहुत बहुत मुबारक हो और बस दुआ करता हूँ जिस मुल्क ने मुझे तो सर छुपाने के लिए एक जगह, एक पहचान, एक नाम दिया है. दुनिया भर में जहाँ भी जाता हूँ इस मुल्क की वैसे पहचाना जाता हूँ और इस मुल्क, इस पाक धरती से इतनी मोहब्बत है जिसका अंदाजा नहीं. तो बस मैं यही पैगाम दूंगा कि इस 14 अगस्त को भी हर 14 अगस्त की तरह खूबसूरत, हरा भरा और हसीन बनाए. हर साल 14 अगस्त और जोशो खरोश से बनाया जाता है. इस साल भी वो जोशो खरोश नजर आ रहा है. तो बस मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा 14 अगस्त के हवाले से. पाकिस्तान जिंदाबाद.
1: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान. दिल जान पाकिस्तान.

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अली पटीना एंड मैं तमाम पाकिस्तानियों को दिस इंडिपेंडेंस डे पे बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी स्पेशल इंडिपेंडेंस डे फॉर ऑल ऑफ अस। तो मेरा ख्याल है कीपिंग द करंट सिचुएशन इन माइंड, जो हमारे आमतौर के जो हालात हैं उनको अगर मद्देनजर हम रखें तो मेरा ख्याल है इस टाइम पे सबको यूनिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें जरूरत नहीं है कि हम एक दूसरे से जुदा होते जाए। अभी भी हमें बहुत कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, हम सबको सोचना चाहिए इस पे। एंड मेरी तरफ से वंस अगेन 14 अगस्त सबको बहुत बहुत मुबारक।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
2: आखिरी हवाला है, मैं रहूं न रहूं खुदा इसको आबाद, नुमाओं की दास्तान को नस्ले नो तक पहुंचाएं ताकि उन्हें इल्म हो सके कि ये मुल्क हमने कितनी मेहनत और अनथक जदोजहद के साथ हासिल किया। खुदा मेरे मुल्क को अपनी अमान में रखे, आमीन। मैं हूं गुलनाज, जीए मीरपुर खास FM 88 की पूरी टीम की जानिब से और मेरी जानिब से तमाम हमवतनों को जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान।

0: पाकिस्तान बनाने वाले
1: 17 अक्टूबर सन 1817
2: साहब कड़ा हाल चाल है नहीं जश्न आजादी ताजी की सेलिब्रेट था क्यों मुबारक अदा तक भी मुबारक हो सवाल बुध है हाँ तो जवाब दियो सना के सना जो सवाल किया
3: जवाब मुसलमानों की अक्सरियत
2: को जाहिर करता है
1: और इसके अलावा
2: इन के अलावा भी कोई आंसर आए ना जो बिल्कुल
1: खुशहाली बिल्कुल
2: एग्जैक्टली बताए इनको
1: जी, मैं आपको बताऊं कि जो मेरे सारे फ्रेंड्स सुन रहे हैं मुझे और सर अशफाक को तो उनको पता होना जरूरी है कि पहली बात कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं इसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ और डिफाइन मैं इस तरीके से करूँ कि आपको जैसे कि हमें पता नहीं होता था यार कि ये हम लोग बच्चे होते थे हरा कलर है हरा सूट पहनना है हरे झंडे लगाने हैं तो ये क्यों लगाने तो ये इसलिए लगाने होते हैं कि यार एक तो हमें जब हमने ये जाना कि अल्लाह ताला ने जो जमीन का हुसन है वो सब्ज और हरियाली की तरह क्यों निखार रहा है कैसे निखार रहा है किस लिए निखार रहा है तो तब जाके हमें ये राज खुला हमारे पास पता चलता है कि हमारे परचम का रंग ही हरा इसलिए रखा गया था। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो हमारा हरा वाला हिस्सा है उसमें ये होता है कि मुल्क में मुसलमानों की जैसे कि आपने बात की अक्सरियत को जाहिर करता है नुमाइंदगी जाहिर करता है ठीक है लेकिन जो उसका सफेद वाला हिस्सा है ना वो आपको
2: हाँ
1: जी अकलियतों को जाहिर करता है लेकिन इसके अलावा जो व्हाइट वाला जो हमारा हिस्सा है वो गैर मुस्लिम शहरियों जैसे मतलब हिंदू सिख वगैरह अमन और उनकी बराबरी का वादा जाहिर करता है। तो ऐसे ही जो हमारा जो चांद बना हुआ है चांद में भी यही कि यार इसमें तरक्की और खुशहाली जाहिर होती है लेकिन जो यहाँ पर स्टार है तारा है तारा हमारी रोशनी इलिम और बेहतरीन मुस्तकबिल की रहनुमाई करता है।
2: चलिए जनाब सना ने आपको इतना डीपली बता दिया है नूर मोहम्मद साहब यू बेओ बताओ हाल चाल है ताजा अलहमदुल्ला ये बताओ ताजे गर्मी शर्मी आई या कौन है ना अच्छा अच्छा अच्छा ये बुधायो था जैसे को आप मिली नगमो के बुधन चाहो था पाकिस्तान जी हवाले सा कोई गीत
3: दिल दिल
2: जमशेद ओके दिल दिल पाकिस्तान जी जी जी बिल्कुल प्ले कर रहा दिल दिल पाकिस्तान
1: कैसे मना रहे हैं भाई कहाँ जाके और कैसे आपने ये सेलिब्रेट किया आज के दिन
2: सना पूछे थी तो कहा घुमन फिरन व्या नूर मोहम्मद साहब आई थिंक नूर मोहम्मद साहब इज गोन और नूर मोहम्मद साहब भलिया बयान पर कोई गाल नहीं तमाम भी असंगी कॉल करे सको था जेको नंबर मुखे याद हमेशा कौन थी दो है सना तांगे नंबर बताई दी सना नंबर केड़ो आया साजो
1: आप कॉल करने के लिए टाइप कर सकते हैं 03000113488 पे आप हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं क्योंकि आपको पता ही ये मौका तो आपको आज ही मिलेगा मेरे साथ बात करने का इसके अलावा
2: बात है
1: आप हमें कॉल पे बात कर ही नहीं पाते हैं तो जी आज आपने जिसने मुझसे बात करनी है वो कॉल पे बात कर
2: जनाब लेते शो की एक और कॉल उसने कहेंगी हेलो
1: तो जी हेलो हेलो वालेकुम सलाम कौन बात कर रहे हैं कहाँ से बात कर रहे हैं
2: सोना खान मस्तूरी साहब ताकि भलीकार आई आजादी जी खोड़ सारी बधाइयों
4: खैर मुबारक सर और आपको और आपकी पूरी टीम को भी सर हमारी तरफ से आपकी बहुत बहुत मुबारक अशफाक भाई
2: थैंक यू सो मच सोना भाई और सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे तो सोना भाई भी हमारी उसी धरती के पैदावार है और ये भी सोना नाम है का बहुत प्यारा सा नाम है
4: जी बिल्कुल और
1: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप बताएं कि आप कैसे हैं और आज आपको कैसा फील हो रहा है मुझसे बात करने के बाद मैसेज भी तो आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं जब आज आप और मैं बात कर रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है लग रहा होगा आप तो वाकई क्या वाकई आजाद हैं आज हम
4: जी जी बिल्कुल और आप जब भी शो करते हैं और आप काम कम लेते हैं और आपका जो है आपके प्रोग्राम हम करते हैं लग रहा है जो है ना आप खुशी भरे मौके पे आप आएंगे हमारे जो है ना
1: जी बिल्कुल ऐसे ही है
2: गीत हमारे प्यारे प्यारे से लिसनर्स होते हैं जो कि कह रहे हैं कि सना आई है तो हमारी खुशी दुबाला हो गई है और मेरे आने से क्या हुआ है मैं तो बेचारा छुप करके बीबा से बच्चा बन के बैठा हूँ मेरी भी तारीफ कर देंगे
1: लेकिन अब दूर दूर तक नहीं है
4: और आज का जो आपने पहले भाई के सवाल पूछा था आप वहाँ पे गए और आज हमने
2: जी जी
4: जी गए थे जिसमें हमने शिरकत की और उसके बाद हम नोट कर वापस आए अभी जो है अपनी फैमिली और अपने जो छोटे छोटे बच्चों और उनके साथ हम जो है आजादी मना रहे हैं।
2: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं और 14 अगस्त का दिन उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनको शहर भी घुमाए हैं, तो बहुत अच्छी बात होती है।
4: और दूसरी ये बात है कि आपका शो भी हमारे घर में चल रहा है रेडियो, और हमने बाहर आकर आपके साथ बातचीत भी कर रहे हैं, हमारा शो फैमिली आपका सुन रही है। बिल्कुल,
2: वाह वाह वाह, सारी फैमिली को हमारी तरफ से सलाम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अपनी फैमिली को, हम आपकी फैमिली को भी गाना सुनाने वाले हैं, पैट्रियोटिक गाना है हमारा दिल दिल। अच्छा, मुझे गाना सुना के सुनाए यार, दिल दिल पाकिस्तान आज आप।
4: सर बिल्कुल, अभी जो है गाना नहीं सुनाएंगे, अभी जो है हम फैमिली के साथ बैठे और कार से बात कर रहे हैं, तो फैमिली सुन रही आवाज है, मैं शर्माऊंगा बहुत भी आपको।
2: नहीं, शर्माने की बात ही नहीं है ना, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो अधिक हम शर्मा रहे हैं। सना मेरे साथ बैठी है, मैं तो बिल्कुल नहीं शर्मा रहा। आप बोल दे पाकिस्तान घूम रहे हैं, एक लाइन
4: पाकिस्तान के लिए हम बोल दू, बिल्कुल पाकिस्तान के जो है ना
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम दुश्मनों की आंखें निकाल लेंगे अगर उससे पाकिस्तान की तरफ आंख मैली आंख से देखा तो
4: निकालेंगे।
2: बिल्कुल चले ठीक है, थैंक यू सोना भाई, आपकी मर्जी, आप हमें नहीं सुना रहे कोई मसला नहीं, हम किसी और लिस्टनर से सुन लेते हैं।
4: सर बिल्कुल, और आज भी सुनाओ, हम ये कहेंगे तो हर दिन की आपके साथ आना चाहिए सर।
2: हाँ सॉरी,
4: हर वीक में जो है आपका प्रोग्राम होता है ना, उसमें आपको सना को जो है हम दावत दे रहे हैं आपके पास।
2: अच्छा चले, सना को दावत दे रहे हैं कि आप हमारे साथ हर जुमे क्यों आया करें।
1: अच्छा तो आप मुझे ज्वाइन क्या करें ना, हर इतवार में होती हूँ आपके साथ पूरे 2 घंटे के लिए, सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक।
2: नहीं भाई आज की तरह
1: हमेशा बर्दाश्त करूं हर फ्राइडे, या तो मैं वो मुझे करें वही करें, या मैं करूं वो मुझे करें।
2: चले जना, बहुत अच्छी बात है सोलह भाई, इंशाल्लाह ताला। हाँ बिल्कुल, आप अपनी बहन को अगर सुनना चाहते हैं तो आपको अपना टाइम बता रही हैं, आप मेरे प्रोग्राम को क्यों खराब करना चाह रहे हैं।
1: अच्छा
2: जस्ट किडिंग, तो आप अपना प्रोग्राम का टाइम बताइए सना आप इनको।
1: जी मैं इतवार आपके साथ मौजूद होती हूँ, ओनली ओनली संडे, सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक।
2: चले आपका सना आपके साथ आती है, हाँ आपकी कॉल्स भी लेंगी और आपके साथ गपशप भी करेंगी। वालेकुम असलम, थैंक यू सोना भाई, अपना पास ख्याल रखिएगा। और हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे से सोना भाई जो कि हमारे साथ हैं और एंजॉय कर रहे हैं। वतन की खाक से बढ़कर कोई मकाम नहीं।

0: ऐं तव्हांखे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी जी वधायूं।
1: लख लख।
0: अच्छा, इहो त ॿुधायो, पाकिस्तान जो नालो कंहिं तजवीज़ कयो? चौधरी रहमत अली तजवीज़ कयो। असांजो जेको आहे इमामदीन भबरो साहब खटी वियो खेर सां।
2: आप बताएं कि आप कैसे हैं और कैसा लग रहा है आपको आज का दिन? पूरा पूरा आजाद होके आप मुझे बात कर रहे
1: हैं।
0: ज़बरदस्त मनाओ चवंदा त तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी करे असांखे तमामु घणो मज़ो आयो।
2: अच्छा, सही सही।
0: त अदा हाणे दिलि दिलि पाकिस्तान मूंखे गाए ॿुधायो ज़रा थोरो। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल मां हींअर हलायां थो दिल दिल पाकिस्तान बि। जी जी वालेकुम अस्सलाम इमामदीन भानू साहब, थैंक यू सो मच। तो सना, इस बार चलते हैं एक मेरी नगमे की जानिब, बिल्कुल पाकिस्तान।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलाएं चलाएं। लास्ट वाला मेरी पसंद का चलेगा, जैसे कि मैंने आपने आपने मुझे बोला था ना,
0: हाँ, तो exactly, लास्ट में चलाऊंगी। तो आप अभी भी चला सकती
2: हैं? नहीं, लास्ट में चलाऊंगी ताकि सुकून से सुनेंगे।
0: चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए दिल दिल पाकिस्तान।

0: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम एलोकिन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
0: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by.

0: हमारा देश हमारा
1: It's not-

0: कमर्शियल ब्रेक
1: 18 अगस्त 25 अगस्त 2026 अंगारे जे दिन सुबह जो 10 वगे खां मंझंद 3 वगे ताई लगी रही आहे जेमे डॉक्टर असद अजीज MBBS MS आर्थो आर्थोपेडिक सर्जन हड्डी अई जोड़ गोडन जो सूर चेल जो सूर कंध जो सूर अर्कुन निसा जो सूर पैदाइशी पेरन जो टेडो हुजण टुटल बाह अई टंग अई हड्डियन जी कमजोरी वारे मरीजन जी मुफ्त चकास कंदो हंध जैनब मेडिकल सेंटर डॉक्टर बिलावल हिंगोर जो अस्पताल वेझो सोढ़ा फ्लोर मिल 7G रोड खिपरो नोट डॉक्टर साहब हर अंगारे ते ओपीडी कंदा वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर्स 0305-327-6608 आई 0344-349-8896
2: अच्छा रंग रौनकों एंड जरखेजी असा जे हारी साईं ताहिन आबाद हाने इन जो अन्याब वधी का मान वधाएन लाए तमास जड़ोता छटाई करन में आसान ने नाइट्रोजन के देर ताहिं दस्तयाबी करे फसल के अन्याब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए

0: इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन मौका लेकर आया है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरों से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंग्लिश और बीएस पब्लिक हेल्थ के एडमिशन्स जारी हैं। मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, इंडोर गेमिंग, कैफेट एरिया और बेहतरीन कैंपस फैसिलिटीज के साथ मयारी तालीम आपके अपने शहर में। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एडमिशन फेवर पर 50% ऑफ और सेमेस्टर फेवर पर 10% का खास ऑफ भी दस्तयाब है। अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाएं, आज ही भिटाई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। लिमिटेड सीट्स, अप्लाई नाउ। मजीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 03222841047।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: सोना से है कामयाबी।

सर्जन डॉक्टर अब्दुल अजीज कुरैशी और सर्जन डॉक्टर इसरार मोहम्मद हयात खान सफेद मोती का ऑपरेशन बजरिया लेजर फेको काले पानी का इलाज और ऑपरेशन पर्दों की बीमारियों का इलाज और आंखों की दीगर बीमारियों का इलाज करते हैं। रोजाना सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक, इतवार तातील है और जुम्मे को ऑपरेशन किए जाते हैं। एड्रेस सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान लेजर आँखों का अस्पताल सर सैयद रोड गरीबाबाद मीरपुर खास। फोन नंबर 03032617

0: असी प्यारे मुल्क पाकिस्तान जे उणा खान जुणे जो साहब मोहतरम जनाब मेहदी मोहम्मद खान जुणे जो साहब गोठ खान साहब दीन मोहम्मद जुणे जो साहब जे गोठ में रहंदड़ जुणे जो बिरादरी ऐं मुल्क पाकिस्तान में रहंदड़ खास खेली बिरादरी खे दिल जे गहराइयुनि सां लख लख मुबारकूं ॾियूं था। पारां गुलाम फारूक खास खेली अली गुल खास खेली मोहम्मद यासीन खास खेली काउंसलर यूसी सिंधड़ी गोठ हाजी मोहम्मद उर्स खास खेली यूनियन काउंसिल सिंधड़ी तालको सिंधड़ी जिलो मीरपुर खास।
1: दिल जान पाकिस्तान हमारा देश हमारा मान। दिल जान पाकिस्तान।

0: पाकिस्तान
1: दिल और जान से मनाते हैं, क्योंकि हमारा आजादी का दिन है, इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है, कोई दिन नहीं है। ये एहसास दिलाता है दिन के हम ऐसे पाकिस्तान से, वरना कुछ भी नहीं।
2: हम लोग यानी यूनिवर्सिटीज में फंक्शन वगैरह होते हैं, वो अटेंड करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और लाइक घर में सजाना, अपना कपड़े अच्छे पहनना, ये सब कुछ होता रहता है पूरे दिन। तीन किस्म का दिन है, जगह जा सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, सब काम अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं।
3: ऐसी बात है, आजादी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते। इसका ख्याल करें आप, अल्लाह पाक ने हमें तोहफा दिया है,
4: हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की है और जदोजहद करके कुर्बानियां देकर ये वतन हासिल किया है, तो हमें चाहिए कि इस मुल्क का ख्याल रखिए।
5: दिल जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, दिल जान,
6: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान। दिल जान पाकिस्तान, दिल

0: हाँ चले जनाब, ये तो फिर लंबी डिबेट हो जाएगी, इसके लिए एक और प्रोग्राम रखेंगे। फिलहाल इरफान टाइम चेक का टाइम बचाता है, ब्रेक का टाइम बचाता है।
1: बिल्कुल अच्छा भाई, अगर हो सके तो सिस्टर मिसेस के लिए, मिसेस अली के लिए आप चमन अली मिराज करता हूँ उनको बिठा दें
0: इंशाल्लाह। मैं वादा नहीं करता लेकिन कोशिश करूंगा।
1: कोशिश करेंगे ना, वादा करेंगे तो झूठा हो जाएगा।
0: हाँ, वो तो कह रहा हूँ।
1: चले कॉल बहुत लंबी हो गई और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी
0: इंशाल्लाह।
1: थैंक यू
0: इरफान, थैंक यू,
1: आजादी मुबारक आपको, आप सबको, आपकी पूरी टीम को
2: जी, आपको
0: थैंक यू सो मच। हमारे साथ इरफान भाई, और इरफान भाई ने बड़ी लंबी छबी कॉल कर ली। अब चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की जाने। कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपके अपने शो जश्न आजादी का, बहुत प्यारा सा शो है जश्न आजादी, रंग पाकिस्तान के।
3: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान।
4: हम ही मंजिल है, हम ही निशान,
3: दिल जान पाकिस्तान।
5: सोना से है कामयाबी।

0: मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
1: डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन तो बेहतरीन मौको सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाइ दाखिला जारी है। चार साल जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN जी
2: बाद हासिल किया गया है। हमें चाहिए कि हम
3: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत

0: भी सोना सेंटर से राब्ता करें।
1: अजीज कायद साबिक सेनेटर मोहतरम जनाब मोहम्मद असद अली खान जुणे जो साहब, मोहतरम जनाब मेहदी मोहम्मद खान जुणे जो साहब, गोठ खान साहब दीन मोहम्मद जुणे जो साहब जे गोठ में रहंदड़ जुणे जो बिरादरी ए मुल्क पाकिस्तान में रहंदड़ खासखेली बिरादरी के दिल जे गहराइन सा लख लख मुबारकूं दियूं था। पारा गुलाम फारूक खासखेली, अली गुल खासखेली, मोहम्मद यासीन खासखेली, काउंसलर यूसी सिंधड़ी, गोठ हाजी मोहम्मद उर्स खासखेली, यूनियन काउंसिल सिंधड़ी, तालुको सिंधड़ी जिलो।

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: तमाम सुनने वालों को अशरफ खान का सलाम पहुंचे। पाकिस्तान हमारी जान हमारी पहचान, पाकिस्तान है तो हम हैं। ये ना देखे कि पाकिस्तान ने आपको क्या दिया, ये सोचिए कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। हर बंदे को हिस्सा डालना चाहिए पाकिस्तान की तारीफ और तरक्की में। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
2: वतन के लिए
3: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के आशार।
2: खुदा करे मेरी अड़ी बरसों यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल न हो।
3: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के आशार।
2: वतन के लिए
0: जान पाकिस्तान।

0: रात की बात नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जो तारीख की चीजें हमें पता होनी चाहिए, और जैसे कि आपको पता है डाटा बाय करने वाला जो टाइम होता है
1: जी।
0: तो इसमें मैं आपको, अगर आपको 14 अगस्त के बारे में बताऊं, क्या जो 14 अगस्त 1947 का जो दिन पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है, जब बरतानवी राज का खात्मा हुआ और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आजाद और खुद मुख्तियार इस्लामी रियासत का तौर जो है पर वो उभरा, मतलब जो हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ, हम लोग की गुलामी से बच के बाहर आए, हमारे लिए आजादी का दिन था। तो ये दिन हमें एक ऐसी दिन याद दिलाता है, ऐसी मुश्किल वाली दिन याद दिलाता है यार, जिसमें हमारे बड़ों ने कितनी मतलब मेहनत की थी, खून पसीना सब कुछ, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो ये चीजें हमारी याद में शामिल रहती हैं, हम इसको चाहकर भी अपने परेशानियों में लाकर भी भूल नहीं सकते। तो ये चीजें हमें याद रखनी चाहिए पहली बात,
1: और हम ये चीजें याद रखेंगे तभी तो हमें आजादी की कदर होगी ना,
0: जब भी कदर होगी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग कहते हैं आजाद है, हमने हरा सूट पहन लिया, ये चीजें नहीं होती। आपने अपनी तारीख की चीजों को याद रखना है, तो ही आप महसूस करेंगे पाकिस्तान का मतलब क्या है।
1: बिल्कुल, और तो ही हम आजादी की कदर करेंगे, हमें आजादी की नेमत के बारे में मालूम होगा, और हम ताहायात आजादी हासिल करने के और आगे बढ़ने के मुतहम्मल हो सकते हैं।
0: बिल्कुल ऐसे ही।
1: तो जनाब, इस वक्त हमें जो है बहुत सारे लिसनर्स के साथ साथ बच्चा पार्टी भी सुन रही है, तो जमाली मोहल्ला बाईपास बच्चा शामियानी से सुन रहे हैं बच्चा पार्टी। डॉक्टर कामरान जमाली है, फुरकान खान जमाली है, राधा शेर जमान खान है, फैजान जमाली और सुफियान खान जमाली भी हमें बहुत सुन रहे हैं, और इंडिपेंडेंस डे भी मना रहे हैं, और हमें और हमारी टीम को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश भी कर रहे हैं।
0: थैंक यू सो मच
1: बच्चा पार्टी, जियो और जीते रहो, और इसी तरह पाकिस्तान की आजादी मनाते रहो। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चा पार्टी, और बच्चा पार्टी हो, बड़ा पार्टी हो, या कोई भी पार्टी हो, सब पाकिस्तानी पार्टी है हम सब की। और अब शो को वाइंड अप करने का टाइम आ रहा है,
0: सही
1: है ना? तो बिल्कुल, हम जाते जाते सिर्फ इतना कहेंगे, दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, निखारना ये चमन है तो अगर एक रहो। तो बिल्कुल जनाब, हम एक रहेंगे तो ही हम नेक रहेंगे, और हम इसी एक रहकर हम अपने वतन की खिदमत भी कर सकते हैं, हम अपने वतन की तरक्की में अहम किरदार भी अदा कर सकते हैं, और हम अपने वतन को तरक्की की राहों पे गामजन कर सकते हैं।
0: वो कहते हैं ना कि हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है ता
1: कयामत की सहर होने तक, इंशाल्लाह ताला। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ मुझे और सना को दीजिए इजाजत, और साथ साथ आपको एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, यौमे आजादी बहुत मुबारक, कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे और ता कयामत रखे, और इसके अलावा इसे खुशहाली दे, तरक्की दे, और हमें अपने वतन के लिए अच्छा और जिम्मेदार शहरी बनने की तौफीक अता फरमाए।
0: आमीन आमीन। अब सुनेंगे आप सारे मेरी पसंद का मिली नगमा।
1: बिल्कुल जनाब, सना की पसंद का मिली नगमा प्ले कर रहे हैं, और आप इनकी पसंद का मिली नगमा सुनिएगा, और जनाब हमारे साथ साथ रहेगा, तो इंशाल्लाह फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी आपके साथ।
0: बिल्कुल, और मिलेंगे हम लोग अपने टाइमिंग के साथ,
1: अपने टाइमिंग के हिसाब से। तो तब तक के लिए सना और शफाक दीजिए इजाजत, सुनिए और सुनते रहिए GFMH8 नेटवर्क, और हमारे बाद सिद्रा लेकर आएंगे आपके लिए एक जबरदस्त सा प्रोग्राम लड़काना स्टूडियो से, तो आप उस प्रोग्राम को एंजॉय कीजिएगा, और हमें दीजिए इजाजत। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन, एंड अल्लाह के पास
0: जी, अल्लाह हाफिज़।

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया सऊद और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जो वतन में रहते हैं, जो वतन से बाहर अपने मुल्क से दूर रहते हैं, उन सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हमें भी चाहिए कि अब हम बढ़ती उम्र के साथ साथ जरा अपने मुल्क से, अपने लोगों से जो है सिंसियर हों और अपने मुल्क के लिए वो सब कुछ करें जो कि आज तक हमने नहीं किया। कदम बढ़ाएंगे तो अपने मुल्क के लिए और अच्छा कर सकेंगे। इससे बेहतरीन तोहफा हमारे मुल्क के लिए कोई नहीं हो सकता। और एक बार फिर मैं बहुत मुबारकबाद दूंगी उन तमाम लोगों को जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं है, जिनकी वजह से हमें ये प्यारा मुल्क, हमारा वतन मिला है। हमारे प्यारे कायदे आजम और उनके साथ जितने भी साथी थे उन सबको भी बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम।
2: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

हिन मिट्टी जा रंग रौनकू ए ज़रख़ेज़ी असां जे हारिय साईं ताहिन आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए

0: या ख़वातीनो आज़ाद ऐं अॼु 14 अगस्त जो ख़ुशियुनि भरो ॾियारो आहे ऐं अॼु आज़ादी जो ॾींहुं आहे। अॼु खां 79 साल पहिरियों असांजो वतन आज़ादु थियो हुयो माशाल्लाह। सो
1: वाइट
2: पया आयो
0: झंडो पूरो थी वियो न पाकिस्तान
2: सफ़ा सही।
0: सो मां इहो पिए चयमि त जेके ज़िंदा क़ौमूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जे लाइ जेको आज़ादी जो ॾियारो हूंदो आहे न उहो इलाही अहमियत रखंदो
2: आहे।
0: सो असां बि आज़ादु क़ौम आहियूं ऐं असांखे पंहिंजे वतन सां प्यारे पाकिस्तान सां इलाही मुहबत आहे ऐं अॼोके ॾींहं ते मां दुआ बि ॾींदुमि ऐं बदुआ बि
2: ॾींदुमि।
0: बदुआ ॾिबी आहे न, हा दुआ असांजी आहे त असांजो जेको प्यारो वतन आहे उहो हमेशा ता क़यामत दायम ऐं क़ाइम हुजे
2: ऐं
0: दुश्मन खे अलाह सां इकारत करे। दुश्मन ॾिसो न, हिकिड़ा त ज़ाहिरी दुश्मन हूंदा आहिनि जेके
2: तव्हांखे ख़बर
0: हूंदी आहे त हीअ दुश्मन आहिनि। आम लाइफ में बि, आम ज़िंदगी में बि असां हिन जो मिसाल वठूं तरी कुझु दुश्मन अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके दोस्तनि में लिकल हूंदा आहिनि।
2: हा,
0: पाकिस्तान जे लाइ असांजी दुआ आहे त जेके हुन जा ज़ाहिरी दुश्मन आहिनि ऐं जेके हुन जा लिकल दुश्मन आहिनि अलाह साईं सभिनी खे नेस्तो नाबूद करे, हा महफ़ूज़ रखे। सो अॼु ख़ैर असां 14 अगस्त आहे, आज़ादी जो ॾियारो आहे, असां पंहिंजे सामाइन खे बि चवंदासीं त हू बि
2: असांखे असां बिल्कुलु तव्हां छा पियो चयो, प्रोग्राम में कॉल्स बि वठंदासीं, प्रोग्राम में कॉल्स बि
0: वठंदासीं। 0333-221-3228 असांजो नंबर आहे, नंबर डायल करे असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। हीउ नॉन स्टॉप प्रोग्राम आहे, कोई कमर्शियल ब्रेक न हूंदो
2: जी, पूरे 8 बजे ताईं
0: नॉन स्टॉप 8 बजे ताईं असां वटि घर घर हूंदा। 7:20 ते हिते ई थी विया, हुन जे करे हिकिड़ो मिली नगमे सां पंहिंजे खून खे गरमायूं था, हुन खां में असां लाइव कॉल जी तरफ़ ऐं साम्हूं जी तरफ़ ईंदासीं।
2: मिली नगमो आहे जेको असां ॿुधंदासीं, अहिड़ो मिली नगमो आहे जेको बाबा चवंदा न सुतलनि खे बि जगाए छॾींदो। सो अहिड़ो मिली नगमो तव्हांखे ॿुधायां थी, तव्हां सभु एंजॉय कजो।
0: बिल्कुलु
2: सुधो पियो आहे, चलो सभिनी जे लाइ मिली नगमो ई प्रोग्राम आहे जनाब। शाम जो जशन, बिल्कुलु शाम जो जशन आहे। तक़रीबन अॼु गर्मी जो ॾियारो हुयो, गर्मी हुई तमामु घणी, त ॿार जेके बि घुमण जो इरादो हूंदो जिन माण्हुनि जो, उहे यकीननि हिन महिल निकिता हूंदा ॿाहिरि घुमण जे इरादे सां।
0: पहिरियों असांजे ज़माने में, हाणे बि उहो ई मज़ा, उहो ई जोश जज़्बा आहिनि, पर अलाए छो पहिरियों तमामु घणो असां एतिरा एक्साइटेड हूंदासीं, या त असां नंढड़ा हूंदासीं तॾहिं एक्साइटेड, हाणे वॾा थी विया आहियूं। सो तव्हांजी छा पोज़ीशन हूंदी?
2: ईअं ई असां बि पहिरियां ख़ुशि हूंदासीं ॾाढो। हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, उन टाइम जॾहिं असां ख़ुशि हूंदासीं, नंढड़ा हूंदासीं ख़ुशि हूंदासीं, उन टाइम जे वॾनि माण्हुनि खां पुछा कजे आहे त उहे ख़ुशि
0: हुजा चवां
2: थी बि सघे थो।
0: असां सभई ख़ुशि आहियूं अलहमदिल्ला त अॼु आज़ादी जो ॾियारो आहे ऐं ज़ाहिर आहे ॿार जेके हूंदा आहिनि, ख़ासि जेके इवेंट्स हूंदा आहिनि, आज़ादी जो ॾियारो थियो, ईद जो ॾियारो थियो, हीउ बि ईद जो ॾियारो आहे। सो ॿार जेके आहिनि उहे ज़ाहिर आहे त एक्साइटेड हूंदा आहिनि। सो अॼु त बसि तूतलिन जी तूं तूं लॻी पई आहे पूरे पाकिस्तान में।
2: चले मिली नगमा एंजॉय करते हैं।

0: सलाम ॾियांव।
1: हा जी जी शामिल थिया लख थोरा तव्हांजा हिनखे त पुराणा आरजी बि हुन ज़माने वारा बि यादि आहिनि माशाल्लाह असांजा पुराणा लिसनर आहिनि। त ख़्वातीन आज़ाद तव्हां असांजे प्रोग्राम में पंहिंजो पैनल ते मैसेज आया आहिनि छा जी? चलो तव्हां असांजे प्रोग्राम में फेसबुक लाइव ते बि कमेंट करे सघो था, लाइव कॉल बि करे सघो था ऐं पैनल ते मैसेज बि करे सघो था।
2: अच्छा टाइम जेको आहे प्रोग्राम जो सफ़ा थोरो आहे, वञी असां वटि बाक़ी अधु कलाकु बचो आहे। सो ॿियो ॿुधायो को हाल
1: अहिवाल आहे पाकिस्तान ते हूंदा हुआसीं न त असांजो प्रोग्राम ई अधु कलाक जो
2: छा कंदा हुयो पोइ हुन में?
1: सो हुन महिल अधु कलाक बि वॾो हूंदो हो, कमर्शियल थोरा ई हूंदा हुआ, बिना कमर्शियल जे जेको
2: आहे।

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान,
1: दिल जान पाकिस्तान,
2: जश्ने आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम,
1: दिल जान पाकिस्तान,
3: दिल और जान से बनाते हैं क्योंकि हमारा आजादी का दिन है, इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है, कोई दिन नहीं है, ये एहसास दिलाता है दिन के हमें इससे पाकिस्तान से, वरना कुछ भी नहीं है।
4: हम लोग यानी यूनिवर्सिटीज में फंक्शन वगैरह होते हैं, वो अटेंड करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और लाइक घर में सजाना, कपड़े अच्छे पहनना, ये सब कुछ होता रहता है पूरे दिन। तीन किस्म का दिन है, जगह जा सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, सब काम अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं।
5: ऐसी बात है, आज़ादी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते, इसका ख्याल करें आप। अल्लाह पाक ने हमें एक तोहफा दिया है,
6: हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की है और जदोजहद करके कुर्बानियाँ देकर ये वतन हासिल किया है, तो हमें चाहिए कि इस मुल्क का ख्याल रखिए।
7: दिल जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद,
1: दिल जान पाकिस्तान, दिल जान।
8: It's time to commercial break.

0: साइंस सरखेज़ असांजे हारिय साईं ताहिं आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक बान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ऐं नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाब करे फसल खे अञा बि शानदार जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए
1: जान पाकिस्तान हमारा देश हमारा मान दिल जान पाकिस्तान दिल जान पाकिस्तान
2: तमाम सुनने वालों को अशरफ खान का सलाम पहुंचे। पाकिस्तान हमारी जान हमारी पहचान पाकिस्तान है तो हम हैं। ये ना देखे कि पाकिस्तान ने आपको क्या दिया, ये सोचिए कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। हर बंदे को हिस्सा डालना चाहिए पाकिस्तान की तारीफ और तरक्की में। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: दिल जान पाकिस्तान हमारा देश हमारा मान दिल जान पाकिस्तान दिल जान पा...

हिन मिट्टी जा रंग रौनकूं ऐं सरखेज़ असां जे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना जान रैम्बो। जश्न आजादी के मौके पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही ये कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
2: पाकिस्तान तो बुधा
3: हाँ दिल दिल पाकिस्तान तांगे बुधा है भाई कोई शेर बुधा नहीं चाहिए उस पाकिस्तान के वाले
2: बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह
3: मुझा मिठड़ा वतन मुझा प्यारा वतन
2: बाबा
3: मुझा मिठड़ा वतन मुझा प्यारा वतन ए जमीन ए वतन सर जमीन ए वतन
2: बाबा
3: तुझा सब मानू सोना सुठा था लगन तुझा सब मानू सोना सुठा था लगन जोर माछी मक्खन का मिठा था लगन
2: वाह वाह वाह
3: जेंजर चेहरो दिसी था सितारा झुकन ए जमीन ए वतन सर जमीन ए वतन मुझा मिठड़ा वतन मुझा प्यारा वतन
2: वाह सही वाह वाह सही वाह मजो अची जबरदस्त माशाल्लाह
3: ही शेर हुआ मुझे दादा सिंह अवामी शायर गुल सिंह गोपाल शाह जो
2: माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त वाह वाह
4: चाचे कॉमेंट कर वो कॉमेंट स्पेशली
2: नजर
4: रिजवान साहब अवां समझो बी शादी की मुबारक पे कॉलर त
2: विदाउट कैप्शन खाली पनो खाली तस्वीर दिखी अथव खाली कैनवस खाली
4: माना आर्टिस्ट चवंदो हाणे तव्हां माना इमेजिन कयो त हिन में कहिड़ी क़िस्म जी माना पेंटिंग थियल आहे
2: तोते यारो लतीफ़ो न आहे सम्झी त वियो
4: शुक्रिया पाकिस्तान हाँ दर्दे दिल थैंक यू तुम असा गड आयो उन खां अलावा निदड़ी तुम भी असा गड आयो ठीक है जी दीदार अली बिरोई तुम शायरी मोकली है उन खां अलावा हिदायतुल अहमदानी असो प्रोग्राम के ज्वाइन कर चुको है खाली सुल्तान की थी सिदरा सरिजवान खवातीन बोल रहे हैं हम खवातीन नहीं है हम गर्ल्स हैं
2: ओके चाचा चाहो था वो खबर पे अच्छा ना है ना तो हंधु वो सड़े जाते बाय लगे हाँ
4: बिल्कुल सही गाल अच्छा उन खां अलावा हिदायतुल्ला तव्हांखे मुबारक हुजे बाबा कमेंट्स बाबा जेके पढ़ूं था जेके अचनि था उहे पढ़ूं था मां हाणे सोचां पई त आवाज़ छा में आई इहो हाणे बंदि थी वियो निदड़ी कहती इतनी खुशी किस बात की
2: जश्न आजादी
4: अच्छा सिटी दोदापुर से अब्दुल्ला लोहर हमारे साथ अदा रिजवान भाई अल्लाह ही टाइम खां पो आया आयो आपको वेलकम 14 अगस्त मुबारक हो
2: खैर मुबारक हावा बस मड़े इवेंट थे को ईद थे को शादी बारात थे मड़े अच्छी विंदा सब मिलन दो आते इंदा हाँ,
4: बिल्कुल
2: आज सब मिलो असा
4: पहुंची गया
2: भरियो से सब
4: अच्छा ये कहते हैं आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आपको जश्न आजादी मुबारक हो
2: खैर मुबारक
4: नालो तो था पांचो लिखियो ही कोने को अब्दुल अमर हमारे साथ इतना मोरी से आजादी मुबारक सर रिजवान और बाजी सिदरा मीरपुर खास कब आएंगे?
2: केर तुझे अब्दुल्ला मायर भाई इंशाल्लाह दा असा जरूर इंदासी
4: अंबन जी मौसम हुई त बाजी गुलनाज लाइट कयो
2: इलाही वाकई में जदे भी गाल बोल थिंदिया डाडो मोहब्बत असा के गुलनाज जको आए वो इनवाइट कंदिया इंशाल्लाह ताला इंदासे त जरूर ता से मिलनास भैया इवेंट रखनासी उते
4: नो नेके लाई साथ होना है
2: मीटअप सॉरी आ मीटअप रखना सही गा
4: चिता ते मानु जेके जेके यूट्यूबर पाने मीटअप रखना है ना वो ना आशर थी ना इन वटा एन कर कैंसिल कयो
2: आशर न करना जे नशर करना जे
4: चलो टाइम जगवा सफा जल्दी गुजरन वने दो

0: खेती सो ॾाढो खूबसूरत हिते तव्हां अमली नगमो ॿुधो पिया हुन खां अलावा असांजी वञण जो टाइम बि बिल्कुलु क़रीब अची पहुतो आहे सो लास्ट में तव्हां असांजी जेका ही जनरेशन ॿुधे पई सो इन खे तव्हां कोई मैसेज ॾियणु चाहींदा छा चवणु चाहींदा
1: मां पंहिंजी ॻाल्हि मां वरजाईंदुमि त असांजी जेका नई जनरेशन आहे मां जेके तव्हां नौजवान आहियो मां उन्हनि खे हथ बधी गुज़ारिश कंदुमि त तव्हां जो जंहिं बि डिपार्टमेंट सां वाबस्ता आहियो तव्हां जॉब कयो पिया तव्हां पढ़ो पिया तव्हां कमीशन जे एग्ज़ाम जी तयारी कयो पिया जंहिं बि फील्ड सां तव्हां आयो पंहिंजी फील्ड सां पंहिंजी ज़ात सां ज़रूरु सचाई कयो अलाह साईं इनशा अल्ला ताला तव्हांखे दिन उर्दू में चवंदा आहिनि दिन दुगनी रात चुगनी तरक़ी देगा इनशा अल्ला ताला सो पंहिंजे कम सां तव्हां सचा थींदव त माना उहा अलाह साईं इंसान खे क़ुरान शरीफ़ में चए थो त मूं पंहिंजी इबादत जे लाइ पैदा कयो आहे इबादत जो मतिलबु इहो न आहे त असां 24 कलाक सजदे में पिया हुजऊं नमाज़ुनि में पिया हुजऊं क़ुरान शरीफ़ पढ़ंदा रहूं पर हलाल रोज़ी कमाइण बि ऐं इबादत आहे असां जेकॾहिं स्टूडेंट आहियूं शागिर्द आहियूं दिलि लॻाए जेकॾहिं असां पढ़ूं था तॾहिं इहो बि असांजे इबादत में शामिल इबादत जो मतिलबु अलाह साईं असांखे इन लाइ पैदा न कयो त असां 24 कलाक अलाह साईं जी इबादत कंदा रहूं पर असां जेको बि माश कयूं पिया कमायूं पिया जॉब कयूं पिया पढ़ूं पिया जेकॾहिं असां ईमानदारी सां हर कमु कंदासीं त असांजो उहो जेको कमु आहे उहो इबादत में शामिल थींदो ऐं असांखे जंहिं मक़सद जे लाइ रब पाक पैदा कयो उहो मक़सदु असांजो पूरो थी वेंदो मुंहिंजो इहो उहो न विसारियो ऐं उन मक़सद खे वठी करे हलंदव त तव्हां हिन दुनिया में बि कामयाबु थींदव ऐं आख़िरत में बि अलाह साईं जे अॻियां तव्हां इनशा अल्ला ताला सुरखुरू थींदव मुंहिंजो इहो नंढड़ो पैगाम पंहिंजे जेंज़ीज़ जे लाइ नंढड़नि नंढड़नि जेंज़ीज़ जे लाइ
0: मां बिल्कुलु हिन कन में सफ़ाई
1: मतिलबु
0: न ही मुंहिंजो सही आहे हेॾा वारो ख़राबु इहो ख़राबु तव्हांजे हेडफोन्स जी वजह सां थियो आहे ओके सो इजाज़त वठूं था तमामु ॿुधंदड़नि सोणनि माण्हुनि खां वरी इनशा तव्हां सां मुलाक़ात मुंहिंजी थींदी सुभाणे वारे प्रोग्राम में सुभाणे मां 1 बजे वारे प्रोग्राम में
1: इनशा 1 खां 2 बजे ताईं उहो कमर्शियल प्रोग्राम न हूंदो ज़ाहिर आहे रुटीन जो जेको प्रोग्राम पहिरियों हलंदड़ हुयो उहो सुभाणे खां इनशा ताला स्टार्ट कंदासीं
0: इनशा
1: बसि पंहिंजे चाचे रिज़वान उल्लाह खे दुआन में
2: अब आप सुनेंगे KFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: आम वाइपे वारनि शयुनि जी बिना रंडक जे फ्राहमी ऐं मुनासिब अघनि ते दस्तियाबी यकीनी बणाई वञे यादगार फताह जी इफ़्तिताही तकरीब दौरान अस्करियत क़यादत जी सदर ऐं वज़ीर आज़म सां गॾु शहीदनि जे वारिसनि सां ख़ुसूसी मुलाक़ात सदर आसिफ़ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जे वारिसनि जी साबित क़दमी ऐं क़ुर्बानीनि खे ख़राज तहसीन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जे वारिसनि जे मथे ते शफ़क़त जो हथ रखंदे चयो त शहीद असांजे मथे जो ताज आहिनि
4: پاکستان کو آزاد ہوئے 79 سال ہو گئے صرف 21 سال بعد ہم اپنی آزادی کی سینچری منائیں گے مگر آزادی صرف سرزمین حاصل کرنے کا نام نہیں تھی یہ حقوق کا وعدہ تھا پاکستان کے لوگوں سے اور ان علاقوں اور ریاستوں سے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کا فیصلہ کیا ہم نے اس وعدے کو اپنے آئین میں لکھا ہمیں اسے بار بار دہراتے ہیں مگر ہمیشہ نبھاتے نہیں 2047 تک ہماری نسل کا کام اس آئینی وعدے کو ہر گھر تک پہنچانا تاکہ محنت کی کمائی سے گھر چل سکے نوجوانوں کو عزت کا روزگار ملے آزادی ہر گھر تک جشن آزادی مبارک پاکستان کھپے پاکستان
3: पाकिस्तान खे आज़ाद थिए 79 साल गुज़री विया 21 वरियनि खां पोइ आज़ादीअ जी सेंचुरी मल्हाईंदासीं आज़ादी रुगो सरज़मीन हासिल करण जो नालो न पर पाकिस्तान जे माण्हुनि सां हक़नि जो वाइदो हो हुननि इलाइक़नि ऐं रियासतनि सां वाइदो हो जिन पाकिस्तान सां गॾजण जो फ़ैसिलो कयो पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जश्न आज़ादी जे मौक़े ते वीडियो पैगाम
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: जान पाकिस्तान
1: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम
0: दिल जान पाकिस्तान।
2: हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हमें सेलिब्रेट करते हैं, झंडियाँ वगैरह लगाते हैं, अपने बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं झंडे वगैरह लेकर, और जो चीज़ें सजी हुई होती हैं पूरे शहर में उसको दिखाते हैं उनको, तमाम मतलब जश्न आज़ादी के बारे में और 14 अगस्त के बारे में उनको तफसीलन बताया जाता है, क्या क्यों मना रहे हैं, हम किस लिए मना रहे हैं, सब चीज़ें उनको बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से बच्चों को।
3: 14 अगस्त हम बहुत खुशी से मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, झंडे लगाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं।
4: दिल जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान
1: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम
0: दिल जान पाकिस्तान।

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबा और जश्न आज़ादी के मौके पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूं और साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि हम सब मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पा...

0: दिल जान पाकिस्तान,
1: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम
0: दिल जान पाकिस्तान।
2: दिल और जान से बनाते हैं क्योंकि हमारा आजादी का दिन है, इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है, कोई दिन नहीं है। ये एहसास दिलाता है दिन के हमें इससे पाकिस्तान से, वरना कुछ भी नहीं।
3: हम लोग यानी यूनिवर्सिटीज में फंक्शंस वगैरह होते हैं वो अटेंड करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और लाइक घर में सजाना उठना, कपड़े अच्छे पहनना, ये सब कुछ होता रहता है पूरे दिन।
4: बेहतरीन किस्म का दिन है, हमें अपनी मुकम्मल तौर पर आज़ादी है कि हम हर जगह जा सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, सब काम अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं।
5: ऐसी बात है, आज़ादी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते। इसका ख्याल करें आप, अल्लाह पाक ने हमें तोहफा दिया है।
6: हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की है और जदोजहद करके कुर्बानियाँ देकर ये वतन हासिल किया है, तो हमें चाहिए कि इस मुल्क का ख्याल रखिए।
7: दिल जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान।

0: जान पाकिस्तान
1: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम
0: दिल जान पाकिस्तान।
2: दिल और जान से बनाते हैं क्योंकि हमारा आजादी का दिन है, इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है, कोई दिन नहीं है। ये एहसास दिलाता है दिन के हम ऐसे पाकिस्तान से, वरना कुछ भी नहीं।
3: हम लोग यानी यूनिवर्सिटीज में फंक्शन वगैरह होते हैं वो अटेंड करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और लाइक घर में सजाना उतना, कपड़े अच्छे पहनना, ये सब कुछ होता रहता है पूरे दिन।
4: तीन किस्म का दिन है, जगह जा सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, सब काम अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं।
5: ऐसी बात है, आज़ादी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते। इसका ख्याल करें आप, अल्लाह पाक ने हमें एक तोहफा दिया है।
6: हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की है और जदोजहद करके कुर्बानियाँ देकर ये वतन हासिल किया है, तो हमें चाहिए कि इस मुल्क का ख्याल रखिए।
7: दिल जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।

0: हर तान पाकिस्तान
1: अबसार अहमद के साथ।
2: 1971 के बाद मशरिकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान गिटारिस्ट पाकिस्तान की मोहब्बत में अपने अहलो आयाल को छोड़कर पाकिस्तान चला आया। उसने पाकिस्तान के मर्दम खेज शहर कराची का रुख किया और यहाँ पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज पर गिटार से ताने उड़ाने लगा। लेकिन उसकी आवाज में भी एक स्पार्क था, इसीलिए वो टीवी स्टेशन में कभी कभी गाने की मशक भी किया करता था। एक दिन प्रोग्राम संडे के संडे में कोई गुलूकार नहीं आया तो टीवी फनकार मोहम्मद इब्राहिम साहिब के कहने पर उस नौजवान गुलूकार को मौका दिया गया, जिसने अपनी आवाज के जरिए आवाम के दिल जीत लिए और फिर उसने जल्द पाकिस्तान की तान यानी कौमी नगमा भी गाकर खुद को कौमी गुलूकारों की फहरिस्त में शामिल करवा लिया। ये आवाज थी हमारे लेजेंड गुलूकार आलमगीर साहिब की। आलमगीर ने अपना पहला कौमी नगमा 1975 को गाया, जिसे असद मोहम्मद खान साहिब ने तहरीर किया था। फिर आलमगीर की जोशीली आवाज में कौमी नगमात बनना शुरू हुए। आइए समाप्त करते हैं अपने इस अजीम फनकार की आवाज में पाकिस्तान की तान, जिसे अल्फाज का जामा पहनाया था मरहूम जमीलुद्दीन आली ने। ये नगमा दरअसल सुबाइयत और लिसानियत के मारों के मुंह पर एक थप्पड़ था, जो कहते थे कि सानिया मशरिकी पाकिस्तान के बाद नजरिया पाकिस्तान खत्म हो गया है। लेकिन आली जी से रहा नहीं गया और उन्होंने फौरन पाकिस्तान को अल्लाह की देन बताकर अवाम को मुतवज्जो किया और कहा कि पाकिस्तान को समझो लोगो, पाकिस्तान खुदा का है। ये नगमा पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज पर निसार बज़मी साहिब की मौसीकी में तैयार हुआ। इससे कबल यही नगमा सुभान राठर और मोहम्मद इब्राहिम साहिब ने रेडियो पाकिस्तान कराची के लिए भी गाया था और फिर खालिद वहीद ने भी इस नगमे को बज़मी साहिब की मौसीकी में गाया। लेकिन आलमगीर की आवाज में ये पाकिस्तान की तान आज भी गूंजती है तो हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान का चेहरा दिल से देखने पर मजबूर करती है कि इस पर आंख जो उठी है खुद बरसों तक रोई है। इसका तसव्वुर, इसका खमीर ईमान और वफा का है। पाकिस्तान को समझो लोगो, पाकिस्तान खुदा का है।

0: हर तान पाकिस्तान
1: अबसार अहमद के साथ।
2: 1971 के बाद मशरिकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान गिटारिस्ट पाकिस्तान की मोहब्बत में अपने अहलो आयाल को छोड़कर पाकिस्तान चला आया। उसने पाकिस्तान के मर्दम खेज शहर कराची का रुख किया और यहाँ पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज पर गिटार से ताने उड़ाने लगा। लेकिन उसकी आवाज में भी एक स्पार्क था, इसीलिए वो टीवी स्टेशन में कभी कभी गाने की मशक भी किया करता था। एक दिन प्रोग्राम संडे के संडे में कोई गुलूकार नहीं आया तो टीवी फनकार मोहम्मद इब्राहिम साहिब के कहने पर उस नौजवान गुलूकार को मौका दिया गया, जिसने अपनी आवाज के जरिए आवाम के दिल जीत लिए और फिर उसने जल्द पाकिस्तान की तान यानी कौमी नगमा भी गाकर खुद को कौमी गुलूकारों की फहरिस्त में शामिल करवा लिया। ये आवाज थी हमारे लेजेंड गुलूकार आलमगीर साहिब की। आलमगीर ने अपना पहला कौमी नगमा 1975 को गाया, जिसे असद मोहम्मद खान साहिब ने तहरीर किया था। फिर आलमगीर की जोशीली आवाज में कौमी नगमात बनना शुरू हुए। आइए समाप्त करते हैं अपने इस अजीम फनकार की आवाज में पाकिस्तान की तान, जिसे अल्फाज का जामा पहनाया था मरहूम जमीलुद्दीन आली ने। ये नगमा दरअसल सुबाइयत और लसानियत के मारों के मुंह पर एक थप्पड़ था, जो कहते थे कि सानिया मशरिकी पाकिस्तान के बाद नजरिया पाकिस्तान खत्म हो गया है। लेकिन आली जी से रहा नहीं गया और उन्होंने फौरन पाकिस्तान को अल्लाह की देन बताकर अवाम को मुतवज्जो किया और कहा कि पाकिस्तान को समझो लोगो, पाकिस्तान खुदा का है। ये नगमा पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज पर निसार बज़मी साहिब की मौसिकी में तैयार हुआ। इससे कबल यही नगमा सुभान राथर और मोहम्मद इब्राहिम साहिब ने रेडियो पाकिस्तान कराची के लिए भी गाया था और फिर खालिद वहीद ने भी इस नगमे को बज़मी साहिब की मौसिकी में गाया। लेकिन आलमगीर की आवाज में ये पाकिस्तान की तान आज भी गूंजती है तो हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान का चेहरा दिल से देखने पर मजबूर करती है कि इस पर आंख जो उठी है खुद बरसों तक रोई है। इसका तसव्वुर, इसका खमीर ईमान और वफा का है। पाकिस्तान को समझो लोगो, पाकिस्तान खुदा का है।

0: man. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: Bright H Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye. Skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White Age Beauty Soap se mile. Chamakta nikhar taazgi ke saath. White Age Beauty Cream. Glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: Dil Jaan Pakistan.
3: Jashne Azadi par. Keh rahe hain sab awam.
2: Dil Jaan Pakistan.
4: दिल और जान से बनाते हैं क्योंकि हमारा आजादी का दिन है. इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है, कोई दिन नहीं है. ये एहसास दिलाता है दिन के हमें इससे पाकिस्तान से, वरना कुछ भी नहीं.
5: हम लोग यानी यूनिवर्सिटीज में फंक्शंस वगैरह होते हैं, वो अटेंड करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. और लाइक घर में सजाना, उठना, कपड़े अच्छे पहनना, ये सब कुछ होता रहता है पूरे दिन.
6: तीन किस्म का दिन है. जगह जा सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, सब काम अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं.
7: ऐसी बात है, आज़ादी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता. हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते. इसका ख्याल करें आप. अल्लाह पाक ने हमें तोहफा दिया है.
8: हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की है और जदोजहद करके कुर्बानियां देकर ये वतन हासिल किया है, तो हमें चाहिए कि इस मुल्क का ख्याल रखिए.
9: दिल जान पाकिस्तान. पाकिस्तान जिंदाबाद.
2: दिल जान पाकिस्तान. दिल जान पाकिस्तान.

सिंध समेत समूरे मुल्क में अॼु 79 जशन आज़ादी क़ौमी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पिशावर, कोटिया समेत नंढनि वॾनि शहरनि में शानदार आतिशबाज़ी जा मुज़ाहिरा। इस्लामाबाद में 31 तोपनि ऐं सूबाई राजधानियुनि में 21 तोपनि जी सलामीअ सां ॾींहं जी शुरूआति कई वई। मुल्की सलामती ऐं खु़शहालीअ लाइ ख़ुसूसी दुआऊं। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस्लामाबाद में यादगार फतह जो इफ़्तिताह करे छॾियो। तकरीब दौरान यादगार इफ़्तिताह जी तमीर बाबति दस्तावेज़ी फिल्म बि ॾेखारी वई। हवाई फ़ौज जे शाहीननि जो शानदार फ्लाई पास कराचीअ में मज़ार काए ते गार्ड्स जी तब्दीली जे पुरवकार तकरीब पाकिस्तान नेवीअ जे कैडेट्स एज़ाज़ी गार्ड जा सभु फ़र्ज़ संभाले वरिता। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ऐं वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी मज़ार काए ते हाज़िरी गुलनि जी चादर चाढ़ी वई।

0: फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क्यादत में पाकिस्तान भारत के जिल्लतवारी शिकस्त देने ईरान अमेरिका जंगबंदी में फील्ड मार्शल नायब वजीर आजम में घरू वजीर अहम किरदार अदा किया। दुनिया अमुन इस्तेकाम लाए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर रही है। आलमी बिरादरी से गज दुनिया के अमुन खुशहाली लाए भरपूर किरदार अदा कर रहा हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी जो इस्लामाबाद में यादगार फतेह के इफ्ताही तकरीब के खिताब चवे तो यादगार फतेह मारका हक में कामयाबी शहीद ने गाजियों जो लाजवाल दास्तान है। गजा में नसुल कशी कं भी सूरत में कबूल ना है। ग्रेटर इसराइल जो ख्वाब कदें भी पूरा न थींदो।
1: वजीर आजम जी मारक हक में अजीम कामयाबी ते कौम के मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ है तो फील्ड मार्शल की क्यादत में हथियारबंद फौज दुश्मन के तारीखी शिकस्त दिनी। हवाई ए सामुंडी फौज के सरबराहन की क्यादत में फौज जो किरदार सारा जोगो है। मारक हक की कामयाबी पाकिस्तान की इज्जत में गैरमामूली वाद कई जैजो मिसाल न तो मिले। इस्लामाबाद में यादगार फतेह के इब्तदाई तकरीब के खिताब कंदे हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ चाहिए पाकिस्तान के पानी जो एक एक फुड़ो असि रेड लाइन है। भारत सीधी वाट से ना आयो तो खेस भरपूर जवाब दिनों वो पाकिस्तान खिते दुनिया के तकरार का पाक दिसण चाहे तो तकरार गडियल कौम के ठहरान मुताबिक हल थे घुर्जे। अमुन चाहूँ था पुरमन की ख्वाहिश के कमजोरी न समझो वजें।

वॾे वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध पाकिस्तान ठाहिण में मुतहद हुई ऐं अॼु पाकिस्तान जी तामीर तरक़ी लाइ पिणु सिंध मुतहद आहे। जॾहिं असां खां 7 या 8 भेरा वॾे मुल्क पाकिस्तान ते हमिलो कयो त समूरी क़ौम हिकु थी वई। अॼु असां पंहिंजे फ़ौज जे करे सुकून जी निंड करियूं था। असांजो वजूद पाकिस्तान जे करे आहे। पाकिस्तान जी तरक़ी में असां सभिनी खे पंहिंजो इज्तिमाही किरदारु अदा करणु घुरिजे।

कराची में जशन आज़ादी के मौके से हवाई फायरिंग जहा वाकया एक औरत मारजी वही औरतों बार समेत 85 जना जख्मी पापोश नगर सराफा बाजार में गोली लगन से 32 वेरन की औरत निदा मारजी वही औरंगी टाउन नाजिमाबाद नॉर्थ कराची पापोश नगर गजरी सदर अकबर रोड आई चंडीगढ़ रोड औरंगी मली लांडी बिन इलाक में फायरिंग जहा वाकया पेश आया फायरिंग सब जख्मी थियन में 18 मर्द 8 औरतू 10 बारड़ा 5 निगरू शामिल जख्मियों में 26 जणन के जना अस्पताल मुंतकिल किया वो 17 सिविल अस्पताल 18 जख्मियों के आबादी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया वो पुलिस फायरिंग करने के इल्जाम हेठ 6 जणन के गिरफ्तार करे वरतो।

नॉर्वे के परदेही वजीर जो वजीर आजम शहबाज शरीफ नायब वजीर आजम इसाक डार ए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलग अलग मुलाकातों बिन तरफन लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गाल मुख्तलिफ शोबन में सहकार वधायण से इतफाक नॉर्वे के परदेही वजीर पारा अमन के क्याम लाए पाकिस्तानी कोशिशों की वाखाण आई एस पी आर मूजिब नॉर्वे के परदेही वजीर वफद से गड जी एस यू में फील्ड मार्शल से मुलाकात कर गडियल दिलचस्पी के मामलों इलाकई सलामती सिक्योरिटी सहकार के ख्याल की नेवट कई फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आलमी अमन इलाकई इस्तेहकाम बाबत पाकिस्तान के मौको पेश कदे गडियल सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुंह दियण लाय सहकार ए गडियल कोशिशों की अहमियत से जोर दिनों इसाक डार से मुलाकात दौरान नॉर्वे के परदेही वजीर मौजूदा सूरत आलमी मईशत लाय खतरो बनल है।

0: ईरान अमेरिका जे आबनाए हुर्मुज ते कंट्रोल वारी दवा के रद्द करे छजो इंसानी हकन वारे मामले ते यूरोपी मुल्क भी मुनाफिक करार ईरानी परदेह वज़ीर अब्बास इराइकी चयो आहे त ईरान खिलाफ़ जंग अमेरिकी इंटेलिजेंस जे वॾे नाकामी जो खुलियल सबूत आहे आबनाए हुर्मुज बाबति बि अमेरिका ग़लति अंदाज़ लॻाए रहियो आहे ईरान खिलाफ़ जारिया जी हिमायत करे यूरोपी यूनियन इख़लाक़ी हैसियत वञी चुकी आहे ईरानी बेसिस फोर्स जे सरबराह हुसैन ताइब चयो आहे त आबनाए हुर्मुज अमेरिका न पर ईरान जे मुकमिल कंट्रोल हेठि आहे
1: अनमोल और पिंकी के मजमूई तौर 25,000 राइडर्स की सुणप मुकमल केस में 10 मू चालान थी चुका बजना सोशल मीडिया ए माहौलियाती अकाउंट्स हलाइंदा हुआ कराची में आकब मंशाह जो नेटवर्क हलाइंदो आहे साबरा ए उमेरा भी मंशाह नेटवर्क जो फाल हिसो आहिनि सेनेट जे घरू मामलनि वारी स्टैंडिंग कमेटीअ जे इजलास में एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान जी ब्रीफिंग चेयरमैन सेफुल्ला अबड़ो सुवाल कयो त तलाल चौधरी बि चयो हो त पिंकीअ खे कंहिं बि सूरत में न छॾियो वेंदो छा हुन ते तव्हां को राब्तो कयो एडिशनल आईजी कराची जवाबु ॾींदे चयो त तलाल चौधरी हिन मामले सां को बि वास्तो को बि राब्तो न आहे कयो अनमोल और पिंकीअ जे हिकु अकाउंट में रुगो हिकु साल दौरान 3 करोड़ रुपया आया हेल ताईं जे जांच में कुल 10 करोड़ रुपियनि जी डेटा साम्हूं आई आहे संदसि बेमानी अकाउंट्स में बाबति जांच जारी आहे

0: जांच लाइ जोड़ियल कमेटी जे सरबराह DIG आमिर फारूकी पारां टीम सां गॾु क्राइम सीन जो दौरो। जांच कमेटी क्राइम सीन खां मीरज़ा जे रिदणे ताईं ऐं आख़िर CCTV फुटेज वारे हंध जो जाइज़ो वरितो। कमेटी सरबराह मीरज़ा जे रिदणे अंदरि वञी मुआइने ऐं अमले सां ॻाल्हि ॿोल खां पोइ वापसि क्राइम सीन पहुतो। कमेटी क्राइम सीन भरिसां मिटी ऐं तेज़ाब जूं बोतलूं पिणु हासिलु कयूं। मीरज़ा जे बिज़नेस पार्टनर मोहम्मद अहमद जे इम्कानी गिरफ़्तारी खां अॻु ज़मानत मंज़ूर। सेशन अदालत 1,00,000 रुपियनि एवज़ मोहम्मद अहमद जे अबूरी ज़मानत मंज़ूर कंदे पुलिस खे संदसि गिरफ़्तारी खां रोके छॾियो।
1: पेट्रोलियम डीलर्स ऐं हुकूमत विच में ॻाल्हियूं नाकाम। 15 अगस्त खां हड़ताल जो फ़ैसिलो बरक़रार। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जे वफ़द ऐं पेट्रोलियम वारे वज़ीर अली परवेज़ मलक विच में इस्लामाबाद में 5 कलाकनि ताईं जारी ॻाल्हियूं कामयाब न थी सघियूं। पेट्रोलियम डीलर्स वफ़द ॻाल्हियूं नाकाम थियण बैदि एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी इजलास सॾाए वरितो। अॻवाणनि मूजिबि ॻाल्हियुनि दौरान हुकूमत तेल क़ीमतुनि में रोज़ानी तब्दीली वारे निज़ाम में तरमीम खां इनकार कयो। हड़ताल वारो फ़ैसिलो बरक़रार आहे।
0: पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इतिहाद जो वफ़ाकी वज़ीर ऐं सिंध हुकूमत जे नुमाइंदनि सां ॻाल्हियूं नाकाम। गुड्स ट्रांसपोर्ट इतिहाद जे 6 ॾींहं बि मुल्क गैर हड़ताल जारी। गुड्स मलिक शहज़ाद अवाण चयो आहे त वफ़ाकी हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत असांजा मसला हल करण में संजीदा न आहिनि। मुतालबनि जी मंज़ूरी ताईं हड़ताल जारी रहंदी।
1: रोहिड़ीअ भरिसां दुबर थाणे जे हद में हथियारबंदनि जी फायरिंग में पुलिस अहलकार शहीद। ॻोठु लाल बख़्श चंझण भरिसां फौरन सां मज़ामते अहलकार ख़लील पंवर शहीद थी वियो। लाश तालके इस्पताल मुंतकिल। वारसनि जो चवणु आहे त हथियारबंदनि फुर दौरान मज़ामते असांजे नौजवान खे फायरिंग करे क़तलु कयो आहे। असांजी कंहिंसां का बि दुश्मनी न आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: वतन के लिए
4: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के अशार।
3: मेरे वतन में उजाले हों हर तरफ अब्बास। अलम बुलंद रहे इसकी आन बान रहे। मेरा वजूद मेरी जिंदगी रहे न रहे। वतन का नाम रहे इसकी ऊंची शान रहे।
4: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के आशार।
3: वतन के लिए

असां सां गॾु सखर वारा बि आहिनि, लाड़काणे वारा बि आहिनि, असां सां गॾु मीरपुर ख़ासि वारा बि आहिनि, असां सां गॾु मटियारी मातलीअ वारा बि आहिनि, असां सां सकरण ऐं मेरापुर वारा बि आहिनि, ऐं मोरो जात माण्हू आहिनि ई आहिनि। जिते जी एफ एम नेटवर्क हमेशह कोशिश कई आहे अहिड़े क़िस्म जा जेके बि इवेंट थींदा आहिनि उन ते स्पेशल ट्रांसमिशन हूंदी आहे, उन स्पेशल ट्रांसमिशन में असांजा जेके सुबुह खां वठी बहितर प्रोग्राम ऑन एयर थिया आहिनि, जेके असांजे न सिर्फ़ जी एफ एम नेटवर्क पर सिंध जे मशहूर आर जे एस जे आवाज़ में तमामु ॿुधा आहिनि। इहो असांजो अहिड़ो तसलसुल अॼु आख़िर ताईं जारी रहंदो। तव्हां पंहिंजी राय असांजे हिन प्रोग्राम में ॾेई सघो था बज़रिए एसएमएस। एसएमएस करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे, हमेशह वांगुरु तव्हांखे असां ॿुधाईंदा आहियूं त तव्हां पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, एम आर ओ लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां सां असांजे 888-1 ते। इहो ज़रूरु हुन में लिखणो आहे त तव्हां जो अॼोको ॾिहाड़ो कहिड़े तरीक़े सां गुज़रियो, तव्हां अॼोके ॾिहाड़े ते स्पेशल कहिड़ियूं एक्टिविटीज़ कयूं, ऐं इहो बि हुन में ज़रूरु तव्हांखे असांखे ॿुधाइणो आहे त अॼोके ॾिहाड़े ते तव्हां अहद कहिड़ो कयो आहे त असां पंहिंजे हिन क़ौम जे लाइ, पंहिंजे हिन वतन जे लाइ छा कंदासीं। अलाह ताला असांखे हीअ सरसब्ज धरती अता फरमाई आहे। जॾहिं अलाह पाक हिन धरतीअ खे पैदा कयो त उनखे कुदरत जो हसीन रंगनि सां सिंगारे छॾियो। सरसब्ज वण, ॿूटा, फसल, बाग, गुल, पाणीअ जूं नदियूं धरतीअ जे हुस्न में इज़ाफ़ो कनि थियूं, ऐं साए रंग फितरत ज़िंदगी, उमेद, अमन ऐं ख़ुशहालीअ जी अलामत बणिजी वियो आहे। ऐं तव्हांखे मां इहो ॿुधाईंदो आहियां, जॾहिं असां पंहिंजी चौधारी नज़र फेरायूं था न, त महसूसु थिए थो त साए रंग में हिकु अजीब कशिश ऐं सुकून समायल आहे। सावा वण न रुगो माहौल खे ख़ूबसूरत बणाइनि था, पर असांखे साफ़ हवा, छांव ऐं ज़िंदगी जे लाइ ज़रूरी ऑक्सीजन पिणु जेको आहे न, उहो बि असांखे फराहम कनि था। सावा फसल हारी जी महिनत मुल्क जी ख़ुशहाली ऐं मुस्तक़बिल जी उमेद जी निशानी आहिनि। उन ई पसे मंज़र में जॾहिं असां पाकिस्तान जे क़ौमी परचम ते नज़र विझूं था न, त उन जो साओ रंग असांखे फितरत जे उन ई हसीन तख़लीक़ सां हिकु गहरो तालुक़ु महसूसु कराए थो। क़ौमी परचम जो साओ हिसो मुल्क जे मुस्लमान अक्सरियत जी नुमाइंदगी करे थो, ऐं जॾहिं त अछो हिसो अक़लियतुनि जी नुमाइंदगी ऐं अमन जो पैगाम ॾिए थो। चंड, तरक़ी ऐं तारो रोशनी ऐं इल्म जी अलामत सम्झा वञनि था। क़ौमी परचम रुगो कपिड़े जो हिकु टुकड़ो न अथव मुंहिंजा साईं, पर उहो असांजी क़ौमी सुञाणप, इतिहाद, क़ुर्बानीनि ऐं उमेदुनि जी अलामत अथव। जॾहिं बि साए रंग ऐं अछे रंग जे परचम खे हवा में लहराईंदे ॾिसो था न, त दिलि में पंहिंजे वतन जे लाइ मुहबत, इज़त ऐं ज़िमेवारी जो अहसासु पैदा थियणु ज़रूरी आहे। असांखे घुर्जे त क़ौमी परचम जी इज़त सां गॾु पंहिंजे धरतीअ जे साए रंग जी बि हिफ़ाज़त करियूं। वधि खां वधि वण पोखियूं, ॿेलनि खे तबाहीअ खां बचायूं, पाणीअ खे ज़ाया थियण खां रोकियूं, पंहिंजे माहौल खे साफ़ सुथिरो रखूं, छो त सरसब्ज धरती सिहतमंद, ख़ुशहाल ऐं ख़ूबसूरत मुस्तक़बिल जी ज़मानत हूंदी आहे। शायदि उन ई करे ई जॾहिं असां सोचूं था त अलाह पाक धरतीअ खे साई चादर सां सींगारियो, त असांजे क़ौमी परचम में बि साओ रंग छो आहे, त दिलि मां हिकु ई जवाबु निकिरे थो त साओ रंग ज़िंदगी, उमेद, अमुन, तरक़ी ऐं ख़ुशहालीअ जो पैगाम आहे।

0: आहे सिन सलामत साथ सलामत। जी हाँ बिल्कुल अदा, असांजी दुआऊं आहिनि तव्हांजो न सिर्फ़ अॼोको ॾिहाड़ो बल्कि जेके बि तव्हांजे ज़िंदगीअ जा ॾिहाड़ा आहिनि उहे ॾाढा ज़बरदस्त गुज़रनि ऐं असां पंहिंजे सिंध धरतीअ जे लाइ, असां पंहिंजे पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान जे लाइ तमामु घणा दुआगू आहियूं त उहे सदा चाम जे ॾींहं ताईं सलामत रहनि। वॾी महिरबानी अदा साजिद अली मुगेरी साहब, तव्हां असांजे शो में शामिलु थिया आहियो, लख कुर्ब लख अहसान। तव्हांजा ॻोठु नबीदाद बंबरो नारो खां इमाम जनू बंबरो पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे, चए थो अदा गुलाब खान ख़ुशि आहियो। जी अदा साईं, मां बिल्कुलु ठीकु ठाकु आहियां, मुंहिंजूं दुआऊं आहिनि ऐं मां बि तव्हांजे लाइ दुआ गो आहियां ऐं चवनि था जश्न आज़ादी जे ॾिहाड़े ते तव्हांखे ऐं तव्हांजी टीम खे मुबारकबाद हुजे। जी अदा ख़ैरु मुबारक, ख़ैरु मुबारक। वॾी महिरबानी तव्हांजी मुंहिंजा मिठा साईं, अलाह ताईं तव्हांखे ख़ुशि ऐं आबाद रखे ऐं असांजे तरफ़ खां बि न सिर्फ़ु तव्हांखे, तव्हांजी फैमिलीअ खे, तव्हांजे ओड़े पाड़े वारनि खे, बल्कि पूरे पाकिस्तान जी जेके असांजा लिसनर्स आहिनि ऐं उनखां अलावा जेके असांजा पूरा पाकिस्तानी आहिनि उन्हनि सभिनी खे बि लख लख वाधायूं हुजनि। त राबिया सखर खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रही आहे, चए थी अलाह का लाख लाख अहसान है कि हमें पाकिस्तान जैसा ख़ूबसूरत मुल्क तोहफ़े में दिया। जी हाँ बिल्कुलु राबिया, हिन में को शक न आहे, अलाह ताला असांखे तमामु घणो हसीन मुल्क अता फ़रमायो आहे। अलाह ताला असां समूरी उहे नेमतूं अता फ़रमायूं आहिनि जेके असां जेके उहे मुल्क जन वटि उहे नेमतूं न आहिनि ऐं उन्हनि जे लाइ ख़्वाबु बणियल आहिनि त उहे समूरियूं नेमतूं अल्ला ताला असांखे अता फ़रमायूं आहिनि त उन जे लाइ असां तमामु घणा रब करीम जा शुक्रगुज़ार आहियूं। राबिया चवनि था त शुक्र अलहमदिल्ला ऐं शुक्रिया क़ाइदे आज़म। जी हा, न सिर्फ़ु क़ाइदे आज़म बल्कि असांजा जेके वॾड़ा हुया न, जेके जिनखे असां ॾाॾा पड़ॾाॾा तव्हांजा बि हूंदा असांजा बि हूंदा, ऐं अगरि तव्हां पाकिस्तान जी हिस्ट्री खोले पढ़ंदा न त उन में तव्हां ॾिसंदा त क़ुर्बानीूं जेके आहिनि उहे के सवनि में न आहिनि, के हज़ारनि में न आहिनि, लखनि में क़ुर्बानीूं आहिनि। उहे नौजवाननि मां उहे वालदेन पंहिंजे नौजवान बचनि जा लाश पंहिंजे हथनि सां खयां हुया ऐं इहे क़ुर्बानीूं के मामूली क़ुर्बानीूं न आहिनि। कंहिं घर जी क़ुर्बानी ॾिनी हुई, कंहिं दौलत जी क़ुर्बानी ॾिनी हुई, कंहिं ज़मीनुनि जी क़ुर्बानी ॾिनी हुई, त वरी कंहिं पंहिंजनि जूं क़ुर्बानीूं ॾिनियूं। उन्हनि क़ुर्बानीनि जो ई इहो सिलो आहे न जो अॼु अलाह ताला असांखे अहिड़ो ख़ूबसूरत मुल्क अता फ़रमायो आहे। बहरहाल हमेशह असांखे इहो कोशिशि करणु घुरिजे त असां पंहिंजे मुल्क वतन पाकिस्तान जे लाइ पाण पतोड़ियूं। तव्हांखे इहा ख़बर आहे त दुनिया तमामु तेज़ीअ सां तरक़ी करे रही आहे न, त उन तरक़ी याफ़्ता दौरनि में असांखे बि त उन्हनि सां गॾु हलणो आहे न, त उन्हनि सां गॾु हलण जे लाइ असांखे छा करणु घुरिबो आहे। जी हाँ बिल्कुल, असांखे तालीम हासिल करणी पवंदी तॾहिं असां उन्हनि सां जेको कुल्हो कुल्हे में ॾेई हली सघंदासीं। त असां गॾु आहे फुलजी स्टेशन खां फौजी पठाण खान खोसो ऐं चवनि था असलाम वालेकुम। त वालेकुम असलाम भाउ मुंहिंजा पठाण खान खोसा साहिबु, कहिड़ा हाल आहिनि अव्हांजा? ठीकु आहियो त भई सही आहे, पुराणा लिसनर आहियो अव्हां असांजा ऐं असांजे प्रोग्रामनि में शामिल बि थींदा आहियो ऐं जश्न आज़ादी मुबारक ॾियो पिया, अलाह से तव्हांखे ख़ुशि रखे मिठा। मुंहिंजी तरफ़ खां बि तव्हांखे जश्न आज़ादी जूं लख लख मुबारकूं। त नंढे ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे, हलूं था ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं ऐं वापसि अची करे शामिल कंदासीं तव्हांजा मोकिलियल प्यार भरिया मैसेजिस।
1: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: वतन के लिए मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के अशार,
4: ये अर्ज़े को हो बयाबान दयारे संगो समर, ये अर्ज़े को हो बयाबान दयारे संगो समर। मेरे वजूद का उनवान नहीं तो कुछ भी नहीं, जमीन का प्यार नहीं सिर्फ खेल लफ्जों का, मैं इसकी खाक पे कुर्बान नहीं तो कुछ भी नहीं।
3: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के अशार,
4: वतन के लिए

0: वतन के लिए
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के अशार।
0: खुदा करे मेरी अर्ज पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशे जवाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल न हो।
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के अशार।
0: वतन के लिए
2: शाजिया तालीम जे मैदान में अगे का अगभर हो बेहतरीन काबिले एतमाद तजुर्बेकार आला तालीमी याफ्ता उस्तादन जे निगरानी में हर मजमून जदीद अंदाज में पढ़ायो वने थो। पांजे बारन जे बेहतरीन तालीम जे लाए असान जे स्कूल जरूर विजिट करियो। असां जश्न आज़ादी के पुरमुसरत मौके से आई जी सिंध पुलिस मोहतरम जावेद आलम ओडो साहब, डी आई जी शहीद बेनजीराबाद मोहतरम फैसल बशीर मेमण साहब, एस एस पी नौशर फिरोज मोहतरम मीर रोहल खान खोसो साहब, सिंध पुलिस के जवान शहीद अहलकार खानदान समूरी

असांजी धरतीअ खे वधीक सरसब्ज़ बनाइण जे लाइ वण पोखण, माहौल जी हिफ़ाज़त करण ऐं कुदरती वसीले जो ख़्यालु रखण बि असांजी क़ौमी ज़िमेवारी आहे। तव्हांखे ख़बर आहे आज़ादी जो मतिलबु रुगो जशन, झंडा ऐं नारा लॻाइण न आहे। हक़ीक़ी आज़ादी तॾहिं मज़बूत थींदी जॾहिं असां पंहिंजे मुल्क सां ईमानदारी, महिनत ऐं ज़िमेवारीअ सां वफ़ादार रहंदासीं। शागिर्द दिलि लॻाए तालीम हासिलु कनि, नौजवान पंहिंजे सलाहियतुनि खे मुल्क जी तरक़ी जे लाइ इस्तेमालु कनि, उस्ताद इल्म जी रोशनी फैलाइनि ऐं हारी महिनत सां ज़मीन आबाद कनि ऐं हर शहरी कानून जी पासदारी करे त असांखे पंहिंजे वतन जे मसलनि खे बि सम्झणु घुरिजे। गुरबत, बेरोज़गारी, महांगाई, तालीम जी खोट, सिहत जूं सहूलियतूं ऐं माहौलियाती मसला असां सभिनी जे लाइ वॾो चैलेंज आहिनि। उन सभिनी मसलनि जो हल सिर्फ़ु हुकूमत जी ज़िमेवारी नाहे मुंहिंजा साईं, हर शहरीअ खे पंहिंजो हिसो जो किरदारु अदा करणो पवंदो।

पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाँ बिल्कुल, असा सभी जी याद आ है पाकिस्तान हमेशा शाद व आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। दोस्तों ने कुछ मैसेज है उन्हें के भी पांजे प्रोग्राम जी सुवा बढ़ाइंदा सी। असन गडा है ने केरा है उमर उमरकोट खा असन प्यारो भाई अब्दुल जब्बार समी जो असन शो में शामिल है। बड़ी मेहरबानी अदा अब्दुल जब्बार तवा असन शो में शामिल थे, लख एहसान लख कुर्बत तवा जा। आई चवन था आई लव यू पाकिस्तान आर्मी आई पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाँ बिल्कुल अदा, असा सभी की मोहब्बत है पांजे वतन के जवानन सा। आई असा दुआ गयो अल्लाह ताला असन जे वतन के सदाई कायम ए दायम रखे। तो फुलजी स्टेशन का फौजी पठान खान खोसो चवे सो गुलाब साहब पाकिस्तान जश्न आजादी जो मुबारकूं। आई अदाजन 65 वारी जेका जंग हुई न उन्हें थे को सॉन्ग आए उन्हें जी फरमाइश कही है। हाजुर अदा बिल्कुल पठान खान तहां के असा बुधराइंदासे। मेहरबानी तवाजी लख एहसान तवा सा प्रोग्राम में शामिल थिया हो। असन गडा राबिया सखर का चवे थी अलाक लाख लाख एहसान है कि हमें पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क तोहफे में दिया। शुक्र अलहमदुल्ला और शुक्रिया कायद आजम जैसे कायद आजम ने और दीगर शहदा ने कुर्बानियाँ देकर हमारे लिए इतनी प्यारा मुल्क आज़ाद करवाया। दुआ है कि अल्लाह उनको भी इससे भी प्यारी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। बिल्कुल राबिया असा दुआ गो उन्हें जे लाए जन असांखे खूबसूरत वतन में आज़ाद हवाओं ने साखण जी मौको दिनों। असा उन्होंने लाए दुआ को हूँ तो अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मेहरबानी तवाजी तवे प्रोग्राम में शामिल थे। तुम टो मैसेज भी मुझे प्रोग्राम में है उनमें तवाजो चवण है तो अल्लाह ताला जहा लख लख एहसान पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क तोहफे में दिया है। मेहरबानी राबिया तवाजी तवे शो में शामिल थे।

मेरा वतन मेरी शान बिल्कुल असो मुल्क पाकिस्तान असानी शान है। दोस्तों मैसेज भी शामिल कह रहा साजिद अली मुगेरी माइक्रो कॉलोनी सखर का चवे तो अज असि संगत के तरफ का सखर पूरे पाकिस्तान के आवाम के दिल की गहराइन से आज़ादी जो लख लख मुबारकू दुआ है तो असाजे इस्लामी एटमी मुल्क के शादो आबाद रखे आमीन पाकिस्तान जिंदाबाद। जो लिखे तो मैसेज वो आए साजिद अली मुगेरी इरशाद अली मुगेरी अली रजा मुगेरी अब्दुल जब्बार मुगेरी अब्दुल खालिक मुगेरी अहमद रजा मुगेरी उनकी फैमिली वही मेहरबानी अदा तवाजी तवा असन प्रोग्राम में शामिल थे फुलजी स्टेशन का फुलजी स्टेशन लग आहे मीठा मोरी खान डॉक्टर शहबाज अली खोसो पे प्रोग्राम बुधे पे चवे तो गुलाब खान भेण अस्सलाम वालेकुम तो वालेकुम अस्सलाम चवे तो पाकिस्तान की जश्न आज़ादी सजे पाकिस्तान के मुबारक पाक फौज को सलाम तय था बिल्कुल पाक फौज के असो सलाम है गोठ डितल खान कोराई खान प्यारो अब्दुल सत्तार कोराई पान के बुधी रहा है वही मेहरबानी अदा अब्दुल सत्तार तुम्हें प्रोग्राम बुधी रहा है चवन था प्रोग्राम बहुत अच्छा है आप सबको आज़ादी मुबारक हो नूरजहाँ के नगमे की अता जन फरमाइश कह असा गड अब्दुल सत्तार है अदा कोशिश कदासी प्रोग्राम जो टाइम तमाम थोड़ो है तवा पसंद जो सॉन्ग बुधायूँ मिली नगमू बुधायूँ इनशाला तला कोशिश पूरी पूरी है तो असा गड मुबारक अली अदा जन गोठ जो नालो शहर जो नालो बिल्कुल को लिखो बल्कि जश्न आज़ाद की मुबारक भी कोनी है तो अदा मेहरबानी तवी तो असो में शामिल थे लख एहसान तवजा लख कुर्ब तवजा मुझा भा

साईं प्रोग्राम आज़ादी जी महफ़िल जो वक़्तु पहुचण वारो आहे पंहिंजी पुॼाणीअ ते ऐं वञण खां पहिरियां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त आज़ादी हिकु वॾी नेमत अथव जंहिंजी क़दुरु ऐं हिफ़ाज़त असां सभिनि जी ज़िमेवारी आहे। अचो त हिन आज़ादी जे ॾिहाड़े ते हिकिड़ो अज़म करियूं। कहिड़ो अज़म कंदासीं त पंहिंजे वतन जी तरक़ी, खुशहाली ऐं अमुन ऐं सलामतीअ जे लाइ ईमानदारीअ सां पंहिंजो किरदारु अदा कंदासीं। पाकिस्तान जी आज़ादी जे लाइ क़ुर्बानीूं ॾींदड़नि समूरनि बुज़ुर्गनि ऐं शहीदनि खे सलाम पेश करियूं था। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, सिंध सलामत, पाकिस्तान सलामत। इनशाला ताला हयाती रही त वरी तव्हां सां ॿिए प्रोग्राम में गॾु हूंदासीं। तेसि ताईं जे लाइ पंहिंजे मेज़बान गुलाब ख़ान भेण खे इजाज़त, अलह वाही अलह निगहबान। वीदे वीदे तव्हांखे हिकिड़ो ॾाढो ज़बरदस्त मिली नगमो बि ॿुधाईंदो थो वञा ऐं उनखे इंजॉय ज़रूरु कजो।

0: खुशहाली को आजाद हुए 89 साल हो गए। सिर्फ 21 साल बाद हम अपनी आजादी की सेंचुरी मनाएंगे, मगर आजादी सिर्फ सरजमीन हासिल करने का नाम नहीं थी, यह हकूक का वादा था। पाकिस्तान के लोगों से और इन इलाकों और रियासतों से जिन्होंने पाकिस्तान के साथ का फैसला किया, हमने इस वादे को अपने आईन में लिखा। हमें इसे बार बार दोहराते हैं मगर हमेशा निभाते नहीं। 2047 तक हमारी नस्ल का काम उस आईनी वादे को हर घर तक पहुंचाना, ताकि मेहनत की कमाई से घर चल सके, नौजवानों को इज्जत का रोजगार मिले, आजादी हर घर तक। जश्न आजादी मुबारक। पाकिस्तान खपे पाकिस्तान।
1: पाकिस्तान की आजादी 89 साल थी वियाय आजादी की सेंचुरी पलाईंदा सी। आजादी रुगो सरजमीन हासिल करण जो नालो न पर पाकिस्तान के माण्हुनि सां हक़न जो वादो हो, उन्हनि इलाक़नि ऐं रियासतनि सां वाइदो हो जिन पाकिस्तान सां गॾजण जो फ़ैसिलो कयो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी जो जश्न आज़ादी जे मौक़े ते वीडियो पैगाम। बिलावल चयो त आइन में लिखियल वाइदे खे बार बार रचाईंदा पिया आहियूं पर सदाई निभाईंदा न आहियूं। नौजवाननि खे इज़त जो रोज़गार मिले, महिनत जी कमाई सां घर हले ऐं वोट जो एहतराम थिए। हू चाहिनि था त हर इलाइक़े खे पाकिस्तान जी तरक़ी में पंहिंजो हिसो मिले।
2: साल पहले साईं सदाई करे मथे सिंधु सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। सिंधियों की दुआ यही है, सबसे पहले हमारा सिंध सरसब्ज शादाब रहे और उसके तवस्सुत से पूरी दुनिया रहे। और उसके बाद कई लोग आए हर वक्त, कोई लंदन भाग गया जिसको खुद होन नहीं करते, अब उसके लोग जो बात करते हैं अगले दिन खुद लड़ पड़ते हैं एक दूसरे से। ये सिंध की मिट्टी है, ये सुबह ये दरिया सिंध का पानी है, जो इस सुबह सिंध को कभी नुकसान नहीं हो तो मैं फिर आ जाऊँ कि ये आईनी तरीका है। सुबह सिंध की असेंबली कई बार ये रेजोल्यूशन पास कर चुकी है। हाँ, डिबेट करनी है, सोमवार करें आप जवाब देने के लिए तैयार है। जी डी ए और पता नहीं कौन सी जमात का नाम लिया, फंक्शनल लीग, फंक्शनल लीग या जी डी ए मुश्तर का अलग अलग ही है। मुझे तो आपके सवाल ही समझ थोड़े यार, इन लोगों को अब ये पुराने हो गए, अब आगे की तरफ चले।
1: सिंध में सूबे की गाल कान ही ना है। सिंध असेंबली इन खिलाफ केतरा ही भेरा ठहराव मंजूर कर चुकी है। सिंध विरायण जो गालू कंदड़ पान में विड़ी पवन था। सिंध धरती जो पानी सूबे के नुकसान पहुंचा न ींद। वे वजीर बाद अली शाह की मजार कायते मीडिया से गाल बोल। वे वजीर कें सूबे बाबत एडवेंचर करणो है तो सिंध असेंबली में भांगे 3 की अक्सरियत से ठहराव मंजूर कराए। जी डी ए फंक्शनल लीग भी तारीख जो हिस्सो थी वह हाँ अगत घुर्ज।
3: हमारे मुल्क में कोई कॉकरोच नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब इंसान के बच्चे हैं। और जेंजी हमारे यहाँ नहीं होते, जेंजी होते जो तोड़ फोड़ करते हैं, अपने मुल्क में आग लगाते हैं, तशद्दुद करते हैं, अपने मुल्क को जलाते हैं। हमारे तो शाहीन है, नौजवान है, अल्लामा इकबाल के शाहीन है हमारे पास। हम इंसान है, खूबसूरत लोग है, जेंजी नहीं है, शाहीन है हम।
1: पाकिस्तान में काक्रोच न पर सब इंसान जा बच्चा इकबाल जा शाहीन आहिन जिन जी पंहिंजे ई मुल्क में पायूं ॾींदा आहिनि ऐं भज ड्रा कंदा आहिनि। सिंध जे गवर्नर निहाल हाशमी मुज़ारे क़ाइदे साफ़ियनि जे सवालनि जा जवाब ॾींदा।

असांजा नौजवान मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कंदा जंग में भारत की निरंक दुनिया सदाई याद रखंदे पेट्रोल पंप मालिकन जो मुतालबो मंजूर हुकूमत पेट्रोलियम डीलर्स जो फी लीटर मार्जन 1.34 रुपया वधाए छोड़ो डीलर्स के मार्जन में वाध का 9.98 रुपया थी वो नाणे वाले वजीर मोहम्मद औरंगजेब की सदारत हेठ ईसीसी के इजलास में पेट्रोलियम डिवीजन नजरसानी समरी पेश कई पेट्रोलियम डीलर्स पारा फैसले की अर्जी अमरीका जो ईरान से सख्त ए खतरनाक माशी पाबंदी लगने जो ऐलान अमरीकी नाणे वाले वजीर स्कॉट बेसन तेहरान खिलाफ अड़ा कदम खड़ वही रहा हूं जैसे दुनिया पहले कदें भी न डिठा हूं अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस ईरान से जंग में पहली तरजीह तेल जो कीमतों घट रखा है हफ्तेवार महंगाई की शरह में बुढ़ी ढाई 15 सैकड़ों बाद पचपोई साल शरह 9.5-11 सैकड़ो थी वही एक हफ्ते दौरान वीह आम वाइपे वाली शूं महंगियों नव सस्तियों शुमारियात खाते की हफ्तेवार रिपोर्ट मुजिब कुकड़ जो गोश्त पत्ती चणन की दाल दही बसर थूम ए बियूं शूं महंगी थी पेट्रोल डीजल खंड पैसा पटाटा टमाटा ए बन शन के घन में घटताई आई

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वतन के लिए
2: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के आशार,
1: जलजलों को न दस्तरस हो कभी, ऐ वतन तेरी इस्तकामत तक हम पे गुजरी कयामतें, लेकिन तू सलामत रहे कयामत तक।
2: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के आशार,
1: वतन के लिए